नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि

0: रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पान गांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101 मेगाहर्ट्ज वर आकाशवाणी चे नांदेड केंद्र आहे। श्रोते हो, सकाळचे 6:05 झाले आहेत। प्रसारित करीत आहोत चिंतन। आज यामध्ये दयावान संत याविषयी ज्ञानेश्वर भोसले यांचे विचार आपण ऐकणार आहोत।
2: दयावान संत। आपल्या आप्तांचं भलं करणारी मंडळी आपल्याला सहज समाजामध्ये दिसतात। आपण ज्यांना आपलं मानतो त्यांच्या हिताची इच्छा सर्वसामान्यांमध्ये सुद्धा असतेच। त्यामुळे अशा व्यक्तींच्या स्वभावाची आपण कल्पना करू शकतो। त्या व्यक्तींनाच आपण स्वार्थी म्हणतो। यापेक्षा थोड्या वेगळ्या स्वभावाची सुद्धा माणसं समाजात असतात, जी चांगल्यांना चांगली आणि वाईटांना वाईट वागणूक देतात। अशी मंडळी बहुसंख्येने दिसतात, यांना आपण स्वार्थी परार्थी म्हणतो। ही मंडळी देखील सामान्य माणसाच्या कल्पनेच्या आवाक्यात येतात, परंतु यापेक्षाही एक वेगळा वर्ग समाजामध्ये असतो। जो सामान्य माणसाच्या कल्पनाशक्तीच्याही अगदी पलीकडे असतो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय

0: संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहामला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
4: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
5: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
4: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक।

0: चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कोरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
1: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
2: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
3: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में अपने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में

0: भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिन्दुस्तान ने लिखा है, इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, गुजरात के महसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बँड 101.1 MHz वर आकाशवाणीचं हे नांदेड केंद्र आहे। श्रोतेहो, सकाळचे 8:15 झाले आहेत। प्रसारित करीत आहोत सुगम संगीताचा कार्यक्रम। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकूया सुमन कल्याणपूर यांच्या स्वरात अशोक पत्की यांनी संगीतबद्ध केलेलं अशोक परांजपे यांचं हे सुगम गीत।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रीतम के संगीत निर्देशन में रेडी फिल्म का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं तुलसी कुमार और केके ने, अल्फाज नीलेश मिश्रा के।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्तिक और बॉम्बे जयश्री की आवाजों में फोर्स फिल्म का गीत, जावेद अख्तर की रचना, हैरिस जयराज का संगीत।

0: साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम विविध भारती से। आइए आप कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि हर साल अक्टूबर को 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है जो हमारे जीवन को ज्ञान, संस्कार और सही दिशा देते हैं। शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि हमारे व्यक्तित्व और भविष्य को भी आकार देते हैं। एक अच्छे शिक्षक की सीख जीवन भर हमारे साथ रहती है, इसलिए आज का दिन उन सभी गुरुओं को धन्यवाद कहने का दिन है जिन्होंने हमें बेहतर इंसान बनाने की राह दिखाई। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं दम मारो दम। इस फिल्म का गीत जयदीप साहनी ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत, आवाजें अर्श किंग और सुनिधि चौहान की।

और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम का गाया ये गीत फिल्म दिल तो बच्चा है जी से। कुमार ने इसकी रचना की है और सुरों में ढाला है प्रीतम ने।

चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपने सुना आरक्षण फिल्म से। आवाजें थी श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की, प्रसून जोशी की रचना, शंकर एहसान लॉय का संगीत। इसी के साथ अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सूरत है भोली सी कातिल हर कदा दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा कोई जाने ना जाने कोई माने ना माने मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा मेरा यार मेरा प्यार मेरा यार मेरा प्यार वो तो आँखों में खुमार लेके आया है हसीन वादियों
1: अपने दौर की संगीतकार रही जद्दनबाई और सरस्वती देवी के बाद एक अंतराल के पश्चात उषा खन्ना का परिचय सुनने वालों से हुआ बतौर संगीतकार। वो फिल्म थी 1959 में बनी दिल देखे देखो।
0: प्यार की कसम है न देख ऐसे।

0: न देख ऐसे प्यार से
1: उषा खन्ना अरेबिक संगीत से हमेशा प्रभावित रही हैं, लेकिन कोई भी गीत उन्होंने अरेबिक म्यूजिक में पूरी तरह नहीं ढाला, बल्कि उस विधा का हल्का सा पुट अपनी शैली में बांधकर उषा खन्ना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट मौलिक संगीत रचनाएं बनाई।

उषा खन्ना को फिल्मी या संगीतमय परिवेश तो पूरी तरह हासिल नहीं था, लेकिन उनके पिता मनोहर खन्ना, जो ग्वालियर में मुलाजिम थे और 1946 में किसी काम से तत्कालीन बंबई आए, जो आज का मुंबई है, तो उनकी मुलाकात जानी मानी अभिनेत्री नरगिस की माँ जद्दनबाई से हुई, जो खुद एक संगीतकार थीं। जद्दनबाई के कहने पर मनोहर खन्ना ने जावेद अनवर के नाम से कई गजलें लिखीं और वो गीतकार भी बने। इसी दौरान उषा खन्ना को भी संगीत ने प्रेरित किया।

जाने माने संगीतकार ओपी नैयर ने उषा खन्ना की मुलाकात करवाई फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी से। उनके लिए उषा जी ने एक गीत भी गाया। मुखर्जी साहब ने इसी दौरान उषा जी की योग्यता को पहचान लिया और उन्होंने उषा खन्ना को संगीतकार बनने की सलाह दी। यही नहीं, शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को अपनी फिल्म दिल देके देखो के लिए साइन भी किया। फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद मुखर्जी साहब ने उषा खन्ना से अपनी अगली फिल्म हम हिंदुस्तानी का संगीत भी तैयार करवाया।

0: जब चले
1: सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उषा खन्ना ने मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ मिलकर अपनी टीम भावना से काम आगे बढ़ाया और इस तिकड़ी ने तमाम हिट गानों का निर्माण किया।

फिल्मकार और गीतकार सावन कुमार टाक का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपनी तमाम फिल्मों का संगीत उषा खन्ना से ही तैयार करवाया है। लगातार संपर्क में आने के बाद दोनों ने विवाह भी किया, जो ज्यादा समय टिक नहीं पाया, लेकिन गीतकार और संगीतकार के बतौर दोनों का व्यावसायिक संबंध हमेशा कायम रहा।

दोस्तों, तत्कालीन उभरते गायकों जैसे अनुपमा देशपांडे, पंकज उधास, हेमलता, मोहम्मद अजीज, रूप कुमार राठौड़, शब्बीर कुमार और सोनू निगम को भी उषा खन्ना ने अपने संगीत में गाने का मौका दिया था। दक्षिण के जाने माने गायक के जे येसुदास ने भी उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में बेहतरीन गाने गाए हैं। फिल्म दादा में येसुदास की गई रचना को फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ।

उषा खन्ना ने हिंदी में 150 से ज्यादा फिल्मों के अलावा मलयालम फिल्मों में भी संगीत दिया है। 60 से लेकर 80 तक के दशकों में उन्होंने अपने कर्णप्रिय संगीत से सभी का दिल बहला दिया। मधुबन

0: क्या दिए।
1: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना पर, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी। वो लिखते हैं,
3: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
3: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
3: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सती बाई साहू जी का।
2: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से H सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
3: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
2: जी।
3: स्त्री शिक्षण को आपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
2: जी।
3: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
2: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
3: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
2: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
3: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
2: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय
3: जी।
2: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
2: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है, मेरे सत्य के प्रयोग
3: जी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, तो हो जाइए तैयार। हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं।

0: हैं।
1: श्रोताओ 8800044559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओ, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओ, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप NCERT के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
1: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में NCERT की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
2: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है
1: जी।
2: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है, उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से
1: जी।
2: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के अध्ययन के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है
1: जी।
2: इन विषयों को हम अपनी 6वीं, 7वीं, 8वीं में दिए हैं और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है, यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास ले लीजिए कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहां से लें उसके बारे में, और तीसरा, आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए
1: जी।
2: इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
1: प्राकृतिक संसाधन,
2: हमारी प्रकृति संसाधन है वो क्या है और

0: साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरचना हम कैसे करें, ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारत वर्ष में ये विषय कितना अहम था। हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है, साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है। क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे
1: जी।
0: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहाँ मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज हैं या हमारी जो फेस्टिवल्स हैं वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
1: भावना
0: आती है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से छठी सातवीं आठवीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं। और आप देखिए आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं। और बच्चे, आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं और ये सारी चीजें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा किया गया, कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारत वर्ष में, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बार्टर से आज मोनेटाइजेशन में हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी विभिन्न ढंग से बताया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे। और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़े, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सके, और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे NEP 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी है जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से, क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको हम लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारी आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
1: अलग अलग कलाएं हैं,
0: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को, इंडियननेस को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करते हैं
1: जी। तो प्रोफेसर गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को हम समय दें कि वो प्रश्न

0: करें, अपनी जिज्ञासा के बारे में औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है। और आप खुद उसके साथ संवाद करें, क्योंकि बुक तो आपके सामने है, लेकिन जब आप उसको आंखों से भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी जो भी विधि पाठ में दी गई है उसको हम एक टीचिंग एड के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों का समावेश कर सकते हैं क्लास में, बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, एक चर्चा करने का मौका मिले उनको, साथ ही साथ उनको हम डिबेट करने का मौका दें। और अगर हमने कोई पाठ के बारे में बताया, सभ्यता और संस्कृति मान लीजिए हमारी पाठ है, तो हम बच्चों को आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हो या हम बच्चों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी उनको विजिट कराने की बहुत जरूरी
1: उनको जरूरत जाएं, है उनको
0: लेके जाएं। और हमारा प्रयास ही होता है कि मान लीजिए गांव में कोई अच्छा आर्टिजन है या कुम्हार है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य है, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो। और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की, और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया। बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, सपना होता है उनके मन में, और ये आप ही कर सकते हैं। विषय को इतना रुचिकारक बनाइए कि बच्चों को लगे हाँ समाज शास्त्र में है जिससे हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की बहुत जिज्ञासा होती है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और जब भी मेरे क्लास में कोई विषय मुझे अच्छा लगता था तो मैं सोचती थी कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या पेंटिंग करूं, क्या एक प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाऊं, या ऑडियो वीडियो बनाऊं। तो ये सारी चीजें अगर उनके मन में आ जाती है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे 6 से 8 की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक है, इट इज वन टेक्स्ट बुक। और इस टेक्स्ट बुक की जो विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है। और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत दायित्व है कि आप इसको कैसे बच्चों तक पहुंचाए, जब उनको इन सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए, और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए
1: जी,
0: ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी एंड चेंज
1: जी। अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी। मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को जहां जहां उन्होंने योगदान दिया है उसको समावेश किया है। और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है, और जहां जहां समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गगया है और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अकब्बा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप

0: सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षावार जहां जहां महिलाओं ने योगदान दिया उनके बारे में चर्चा किया गया है और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है पर कुछ कारणवश जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा। और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
1: कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल महिलाएं देखी जा सकती हैं।
0: सभी क्षेत्र में जी उनका योगदान है। और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्यपुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्यपुस्तक में विजुअल कंटेंट में महिलाओं का समावेश है, जिसको हम कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको अजीत जी
1: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा।
3: अरे वाह, पौधा निकलाया।
2: कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला,
3: ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।
2: दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले,
4: क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो।
2: प्रिया बोली,
5: पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे।
2: उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे, फिर प्यार से बोले,
4: अरे बच्चों, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे।
2: ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला,
3: कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे।

0: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आम का पेड़।
1: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
2: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
0: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है।

0: तो अब अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: मुकुल सिंह,
1: वीरेंद्र
0: और हमारी आज की विशेषज्ञ
1: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: NCERT चा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपण ऐकला आकाशवाणीच्या नांदेड केंद्रावरून।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी है और इस इबारत के जरिए आप अंदाजा लगा चुके हैं कि आज किस तरह के या कौन कौन से गाने पोस्ट होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। ये इबारत उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने विविध भारती का फेसबुक पेज नहीं देखा है। दो लोगों की बातचीत है इस इबारत में। देखो ना, अक्टूबर आ गया, पल पल कैसे बीता जा रहा है ये साल। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। पता भी नहीं चलेगा साल बीत जाएगा, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है। तुम तो शायर बन गई। मैं शायर तो नहीं, शायर नहीं या तुम शायर बदनाम। अच्छा बताओ, क्या ख्वाब देख रखा है तुमने अपने लिए? मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। अच्छा तो क्या आज भी गानों में बातें करनी है? धूप लगे तुझको तो छाया बनू, किताबों में लिखे हैं चाहत के किस्से। हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? जाओ नहीं करनी बात, बात बात में रूठो ना। तो भाई ये आज की इबारत, और इस इबारत के जरिए आज के गानों का इशारा तो हो गया। बहुत सारे श्रोताओं के मैसेजेस हमें मिले हैं, और इतने सारे कि इन सब को पढ़ना लगभग मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अक्टूबर की दस्तक के साथ साल बीतने के एहसास ने दो दोस्तों की बातचीत को बहुत रोमांटिक और संगीतमय बना दिया है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं आपसे रूठा हुआ हूं क्योंकि आप जल्दी जल्दी कार्यक्रम देने के लिए नहीं आते हैं, बहुत इंतजार करवाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अक्टूबर का यह खूबसूरत महीना साल के सबसे प्यारे सुहाने मौसम की शुरुआत लेकर आता है। इस महीने गर्मी कम होती है, हल्की ठंडी हवाएं चलती हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार आते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सच में कितनी खामोशी से पल गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता कब महीना साल बन गया। इसलिए जो पल आज हमारे पास हैं उसे शिकायतों से नहीं, मुस्कुराहटों और अपनों के साथ जी लेना चाहिए। बीता हुआ पल लौटकर वापस नहीं आता। एक और श्रोता का कमेंट है, जनवरी से शुरू किया आ गया अक्टूबर, लाख कोशिश की मगर मिला न कोई दिलबर, मिला न कोई दिलबर तो अकेला रह गया, दुनिया भर के रंजो गम सह गया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा एक श्रोता और हैं जिनका कमेंट शामिल करते हैं और फिर आज के पहले गाने की तरफ बढ़ेंगे। ये लिखते हैं कि विविध भारती के 70वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक और सुरीले प्रसारण में यूनुस खान, ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी शामिल हुए, इन्हें समर्पित एक कविता। विविध भारती के 70 साल सुरों का कारवां, 70 बरस से जो गूंज रही है वो देश की प्यारी वाणी है, हर दिल को जो सहलाती है वो सुरीली कहानी है। सतरंगी सुरों की महफिल में कुछ नाम सदा ही छाए हैं, अपनी आवाज के जादू से जो दिलों में बसने आए हैं। यूनुस खान साहब की वो गंभीर नशीली तान सुनो, अल्फाज तराशे लगते हैं जब गूंजे उनके गान सुनो। फिर आती है ममता जी जो सबकी रेडियो सखी बनी, सुख दुख की बातें करने वाली वो एक पावन नदी बनी, सखी सहेली के आंगन में वो बहनों की हिम्मत जगाती हैं, ममता मायूस आवाज से वो हर घर को महकाती हैं। और मंदाकिनी जोशी का अंदाज बड़ा ही पावन है, हेलो सहेली और सदाबहार नगमे जैसे महकता सावन है, सहज सरल सौम्य रूप बातों में मिसरी घुलती है जब वो माइक पर आती है, यादों की खिड़की खुलती है। सुंदर बातें आपने लिखी। चलिए आज के पहले गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना है।

गुलबाल फिल्म का गाना गुलजार साहब के बोल। जब ये गाना बजता है तो जैसे गाने अतीत की तरफ हमें ले जाते हैं, ये गाना अतीत के किस बरस की तरफ, किन यादों की तरफ आपको ले जाता है। इसके अलावा एक और बात, 9 महीने तकरीबन बीत गए इस साल के, इन 9 महीनों में आपने क्या खोया और क्या पाया?

आने वाला पल जाने वाला है। हमारे कई श्रोताओं को इस गाने के जरिए मजा आ गया। एक श्रोता ये कहते हैं कि फिल्म गोलमाल का गीत सुनकर उत्पल दत्त याद आ जाते हैं, और याद आता है आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें आगरा का पेठा खिलाऊंगा। उत्पल दत्त का रोल शानदार है। और कुछ श्रोताओं के लिए एक क्विज, एक सवाल, गोलमाल फिल्म के संवाद किस लेखक ने लिखे थे ये बताइएगा। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि रीगल सिनेमा जमशेदपुर में ये फिल्म देखी थी और बस वो दौर याद आ जाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विगत 9 महीनों में कुछ अजीज दोस्तों को खोया है जिनसे हमारा रीयूनियन गुलजार रहता था। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस वर्ष हमने खोवे की बर्फी पाई। भाई ये मजाक का जो तरीका है ये मजेदार है।

इसके अलावा एक और श्रोता जो कहते हैं कि अपने कॉलेज और दोस्तों की याद की तरफ घूम गए इस गाने को सुनकर। अक्टूबर अपनी गरिमा और पूरी लालिमा के साथ उपस्थित है और जब ये गीत आने वाला पल रेडियो पर बजता है तो लगता है कुछ भी नया पाने की चाहत में वो सब कुछ गवा देना जो पहले से तुम्हारा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आपने शोले की जो थीम कार्यक्रम को शुरू करते हुए बजाई उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से एक श्रोता लिखते हैं कि वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है, देखिए ना बातों बातों में अक्टूबर भी आ गया। कभी धूप तो कभी छांव की तरह जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन इस बदलते वक्त में अपनों के साथ रूठने मनाने का ये सुरीला सिलसिला और सात रंग से सजे खूबसूरत सपने ही जीने का असली मजा देते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि रूठना सेहत के लिए नुकसानदायक है और आपस में नोकझोंक होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस दृष्टिकोण से ये इबारत लिखी हुई लग रही है। चलिए भाई, जब रूठने का जिक्र आ गया है तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज आप किससे रूठे हुए हैं, आज आप किससे रूठे हुए हैं और क्यों रूठे हुए हैं।

0: अवतार फिल्म का ये गाना राजेश खन्ना और शबाना आजमी, बहुत ही प्यारी सामाजिक फिल्म थी ये, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता जिन्होंने लिखा कि आनंद बख्शी का लिखा ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। गोलमाल सबसे पहले दूरदर्शन पर देखी थी, पूरा परिवार एक साथ बैठकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर फिल्में देखता था। घर के बुजुर्गों को ये फिल्म खासतौर पर पसंद आई थी। एक श्रोता ने जवाब दिया है कि शानदार और चुटीले डायलॉग गोलमाल फिल्म के डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि दुनिया की भीड़ में अकेले आदमी को बस एक सच्चा सहारा मिल जाए तो उसकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी शादी की शुरुआती दिन थे जब मैं अक्सर अपनी पत्नी को ये गीत सुनाता था। वैसे मैं एक गायक हूं और जब पत्नी रूठती हैं तो गाने सुनाकर उनको मना लेता हूं। और फिर एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम आज उन्हें बहुत ही पसंद आ रहा है। और इसके अलावा ये एक श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म अवतार के जरिए मुझे एके हंगल याद आ गए और शोले की आपने जो ट्यून बजाई उससे भी एक हंगल याद आ गया। एक श्रोता अपनी नवासी से रूठे हैं क्योंकि वो वीडियो कॉल पर उनसे बात नहीं कर रही है। तो ये हमारे श्रोताओं की बातें और कुछ और कमेंट्स जो हमारे श्रोताओं के आए हुए हैं, उसमें से एक श्रोता ये कहते हैं कि वो अपने शहर मिर्जापुर आए हुए हैं और यहां अपने विविध भारती के संग हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता कहते हैं कि आपने याद दिलाया तो याद आया कि अब इस साल के 3 ही महीने बचे हैं और तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं ये गाना इबारत इशारा करती है। और निदा फाजली के बोल आर डी बर्मन का संगीत अक्टूबर का समा कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे गर्मियों से निजात दिलाता हुआ सर्दियों की हल्की दस्तक सुनाता हुआ गुजरे साल के ख्याल लिए हुए अपनी ही धुन में मगन रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ख्वाब जब मैं स्कूल में था तो खुद कविताएं लिखा करता था, फिर जिम्मेदारियों में लिखना कब कहां खो गया मालूम नहीं। और सुरीले सफर कार्यक्रम की इबारत पढ़कर कविताएं लिखने का जुनून जागा है और ख्वाब तो ये है कि विविध भारती मुझे बुलाए और मेरा इंटरव्यू करे। ओ हो, बड़ी प्यारी बात। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कतरा कतरा बरसना और लफ्ज हो जाना, आसान नहीं है कुछ कहना और शायर हो जाना।
1: दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, सब ये गजल है।
0: फिल्मी दुनिया के सबसे छबीले नायक का गाना।
1: दिल आज शायर है, गम आज नगमा।
0: कौन है वो?

भाई देखिए, ये इतना प्यारा गाना और यूं लगता है कि जैसे इतनी जल्दी खत्म हो गया। ये प्यार कोई खिलौना नहीं, हर कोई ले जो खरीद। हमारे एक श्रोता ने ये पंक्ति लिखी है। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती है, ये गीत ऐसा है जैसे कहीं दूर क्षितिज पर बस मन बढ़ा चला जा रहा है। हीरोइन का चौड़ा माथा, गहरी आंखें, लंबा कद और हल्की सी मुस्कान इस गीत का पीछा करती है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि संभाजी नगर में अवतार फिल्म देखी थी। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम आपसे रूठे हुए हैं क्योंकि आप पहले प्रोग्राम को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करते थे पर अब नहीं करते। भाई ऐसा आपको क्यों लगा? अंदाज तो वही है, कार्यक्रम भी वही है और वैसे ही तो पेश किया जा रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि इस गीत की खासियत यह है कि इसमें कोई अंतरा रिपीट नहीं होता। देवानंद एक ही जगह पर पूरा गीत गाते हैं और साथ में जाहिरा हैं। नीरज ने ये गाने लिखे थे, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गाना सुनते ही ये समझ में आ जाता है कि देव आनंद गा रहे होंगे। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने विविध भारती की सालगिरह पर प्रसारित कार्यक्रम अच्छा लगा इसकी बधाई दी है और कहा है कि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही त्योहारों की खुशबू महसूस होने लगती है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अक्टूबर आते ही जो सबसे खुशी की बात होती है वो ये कि विद्यार्थियों के लिए अब छुट्टियां करीब हो जाती हैं। वही बढ़िया बात कही है आपने। और अब मुझे लगता है कि चूंकि शायरी की बातें चली हैं तो इसी तरह के ख्याल को आगे बढ़ाते हैं। आप में से कितने श्रोता ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लिखते हैं, शेर कहते हैं या कविताएं कहते हैं? कुछ पंक्तियां हमें लिख भेजिए। तब तक शैलेंद्र सिंह ये बात कह रहे हैं। फिल्म बॉबी के जरिए फैशन की एक नई लहर शुरू हुई थी और फैशन की लहर को घूम फिर कर वापस भी आती है। क्या आपके जमाने में बॉबी के फैशन को अपनाया गया था?

0: मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। मैं शायद
1: एक श्रोता ये लिखती हैं कि या लिखते हैं कि हम कविता करते थे, अब कभी कभार जन्मदिन पर चार लाइनें लिख देते हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि ऋषि कपूर बेल बॉटम में इस गाने में नजर आते हैं। सचमुच में शायर तो नहीं, लेकिन विविध भारती के लिए थोड़ी सी शायरी कर लेते हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, फूलों सी नाजुक चांद सी हंसी हो तुम, मेरे दिल के बागों की अकेली कली हो तुम, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मेरी नजरों में सबसे खूबसूरत हो तुम। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपनी कविता लिखी है, यूं तो जिंदगी भर का सफर पर साथ जब तुम्हारा हो, जिनके अंदाज जीने के अंदाज निराले हो जाते हैं, जीना तो हर हाल में। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ तुकबंदियां यूं ही हम कर लेते हैं, मन की तरंगों को शब्दों में समेट लेते हैं, सुरीला सफर संग ताल में ताल कुछ मिला लेते हैं, कोई शाबाशी न दे तो खुद ही पीठ थपथपा लेते हैं। भाई वाह। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इन नन्ही आंखों में जब भी झांकते हैं हम, भूल जाते हैं जिंदगी के सारे गम, क्या खूब जादू है इन मासूम चेहरों में, हमें फिर से हमारे बचपन से मिलाते हैं हम। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि शैलेंद्र सिंह आए थे नायक बनने, पर राज कपूर की कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया और बाद में गायक बन गए। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती है कि जब बॉबी आई थी तब ही मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे घर का नाम बॉबी रख दिया गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि सुरीला सफर का आधा सफर ऑफिस पहुंचते
2: उमा रायकर राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। स्वित्झर्लंडचे अध्यक्ष गाय पार्मेलिन यांचं 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी नवी दिल्लीत आगमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर द्विपक्षीय चर्चा, रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा

हरजाई फिल्म का ये गाना कितने सारे श्रोताओं को पसंद है और भैया बहुत ही शानदार मेन्यू आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ दाल ढोकली सलाद और आम के अचार का भोजन है। एक श्रोता हैं ये लिख रही हैं कि मैं बहुत ही उलझन में हूँ, बहुत दिनों के बाद बेटा घर आने वाला है, उसकी पसंद का खाना बना है, हरी सब्जी तो वो कम पसंद करता है। आपने विविध भारती के श्रोताओं से मेन्यू पूछा तो मुझे लगा कि मैं इसमें से ही कुछ बना लूं, तो भुट्टे बॉईल कर लिए गए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भाई जब गाने प्रसारित किए जा रहे होते हैं तब आप स्टूडियो में क्या करते हैं, क्योंकि तब तो हम कमेंट कर रहे होते हैं। तो भाई इसका जवाब ये है कि हम कमेंट पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रही हैं कि मैं अपने बेटे के लिए सत्तू की लिट्टी और चोखा बनाती हूं क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद है, छुट्टियों में जब वो घर आता है तो ये बनता है। एक श्रोता है जो अपने पतिदेव के लिए बैंगन का भरता और पराठे बनाती हैं। और एक श्रोता लिख रही हैं कि हर गृहिणी को अपने परिवार में अलग अलग सदस्यों की पसंद के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं अभी फिजियोथेरेपी करवा के आई हूं और अब फूलगोभी की सब्जी और मूंग की धुली दाल बना रही हूं, लेकिन इतना सारा मेन्यू सुनकर कंफ्यूज हो गई हूं कि भाई मुझे क्या बनाना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन यहां एक हैरत की बात सामने ये आई है कि खाना बनाने के बारे में सब कुछ महिलाओं ने ही लिखा है, एक भी पुरुष श्रोता ने ये नहीं लिखा कि वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए क्या खाना बनाते हैं। तो भाई पुरुष श्रोताओं के लिए ये गाना

0: काम की।
1: भाई इस गाने में मोहब्बत बड़े काम की चीज है और ये बेकार बेदाम की चीज है, ये इन दो बातों पर बहस हो रही है। तो चलिए आज एक पोल करते हैं, कितने लोगों को लगता है मोहब्बत काम की चीज है, कितनों को लगता है ये बेकार बेदाम की चीज है। लिखिए।

तो भैया मैं आपसे ये पूछा है कि कितने लोगों को लगता है कि मोहब्बत काम की चीज है और कितने लोगों को लगता है काम की चीज नहीं है।

बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने, बल्कि तकरीबन सभी श्रोताओं ने ये कहा है कि मोहब्बत काम की ही चीज है और सुकून से जीने का सबब है। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर प्यार ना हो तो जिंदगी नरक हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने मजाक करते हुए ये लिखा है कि शादी से पहले मोहब्बत काम की चीज है और शादी के बाद काम की चीज नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा मेन्यू भी आ रहा है और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कार्यक्रम में इतना कम वक्त है कि ये मेन्यू शामिल करूं कि ना करूं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव आया था और वो ये, मैंने कहा था कि भाई जो पुरुष खाना नहीं बनाते घर पर, उनके लिए ये गाना और बजाया त्रिशूल का गाना। तो एक श्रोता ने सुझाव दिया कि भाई ऐसे पुरुषों के लिए होना चाहिए ये गाना। अब जरा सोचिए कि लिस्ट में तो नहीं था ये गाना, लेकिन जिन श्रोताओं को खाना बनाना नहीं आता, पुरुषों को, उनके लिए तो भाई ये मैं के गई वाला गाना ही सही होना चाहिए। फिर बहुत सारे मेन्यू जो हैं, अब तमाम श्रोताओं से तो मैं यही कहूंगा कि आप आज ये जो सुरीला सफर है इसका, इसके कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़िएगा और यहां पर जो खाने का मेन्यू है ना, ऐसी लिस्ट बन जाएगी कि कई हफ्तों तक आपके घर पर अच्छा अच्छा खाना बनता ही चला जाएगा। और अब रूठने मनाने वाला गाना, कार्यक्रम का तकरीबन आखिरी गाना है। हमने पूछा था आज कौन किससे रूठा हुआ है, ज्यादा लोगों के जवाब नहीं आए, यानी कोई किसी से रूठा नहीं है। भाई किसी से भी रूठिए पर विविध भारती से नहीं।

भाई रूठने की बात तो हो गई। एक श्रोता ने ये लिखा है कि हमारा तो किचन में जाना निषिद्ध है क्योंकि हमें कुछ भी बनाना नहीं आता। अब ये पुरुष श्रोता हैं तो भाई आज ये कहकर इस कार्यक्रम से विदा लेंगे हम कि अगले कार्यक्रम में जब मिलेंगे तो पुरुष श्रोताओं का बनाया हुआ मेन्यू पूछेंगे, तब आप बताइएगा कि आपको कुछ बनाना नहीं आता, वरना तब तक सीख लीजिए क्योंकि

देखिए ना भाई, ये पल किस तरह से बीत गया और कार्यक्रम का वक्त एकदम खत्म हो चुका है। आप सभी के साथ बहुत आनंद आया, आप सभी श्रोताओं ने जिस तरह से कमेंट्स करके साथ दिया और खासतौर पर जिस तरह से आज लंच का मेन्यू बताया, बड़ी मजा आ गया। फिर मिलेंगे और इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि मिलकर तय करते हैं हम सुरीला सफर। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, देश की सुरीली धड़कन। इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

दोस्तों आइए विचार करें कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाए।

दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गांवों के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय

0: के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी X पर @AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
1: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
2: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
1: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
2: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
3: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
4: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
3: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
5: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
3: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, X पर @AIRNewsHindi।

0: और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के ओर बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
1: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे,
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो

0: मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से सदा

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है
0: दुश्मन,
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। शकील बदायूं के बोल रवि की गर्ल्स, मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म

और कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सुमन कल्याणपुर की आवाज, नूर महल फिल्म का ये गीत सबाफ खाने के बोल जानी बाबू कव्वाल की तर्ज़।

0: दास का घर राजनगर है, मैं वहां का जागीरदार हूं। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुग्रह किए हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा संपदा है, सब आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है। मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत दिनों से आपके दर्शन की आकांक्षा थी। आज वह सुअवसर भी मिल गया, अब मेरा जन्म सफल हुआ।
1: पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। पैतृक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था। वो दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी थोड़ी देर के लिए विदा हो गई। वे गंभीर भाव धारण करके बोले,
2: ये आपका अनुग्रह है जो ऐसा कहते हैं, नहीं तो मुझ जैसे कपूत में तो इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपने को उन लोगों की संतति कह सकूं।
1: इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठे और बातें होने लगी, वे बातें जिनका प्रत्येक शब्द पंडित जी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातः काल की वायु फूलों को खिला देती है। पंडित जी के पितामह ने नवयुवक ठाकुर के पितामह को 25,000 रुपए कर्ज दिए थे। ठाकुर अब गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता था, इसलिए जरूरी था कि उसके जिम्मे जो कुछ ऋण हो उसकी एक एक कौड़ी चुका दी जाए। ठाकुर को अपने पुराने बही खाते में ये ऋण दिखाई दिया। 25 के अब 75,000 हो चुके। वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर आया है। धर्म ही वो शक्ति है जो अंतःकरण में ओजस्वी विचारों को पैदा करती है। हाँ, इस विचार को कार्य में लाने के लिए पवित्र और बलवान आत्मा की आवश्यकता है, नहीं तो वे ही विचार क्रूर और पापमय हो जाते हैं। अंत में ठाकुर ने कहा,
0: आपके पास तो वे चिट्ठियां होंगी।
1: देवदत्त का दिल बैठ गया। वे संभल कर बोले,
2: संभवतः हो, कुछ कह नहीं सकते।
1: ठाकुर ने बहुत लापरवाही से कहा,
0: ढूंढिए, यदि मिल जाए तो हम लेते जाएंगे।
1: पंडित देवदत्त उठे लेकिन हृदय ठंडा हो रहा था।
2: शंका होने लगी है कि कहीं भाग्य हरे भाग ना दिखा रहा हो। कौन जाने वो पुर्जा जलकर राख हो गया या नहीं। यदि ना मिला तो रुपए कौन देता है। शोक की दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूट जाता है। हे भगवान, वो पत्री मिल जाए। हमने अनेक कष्ट सहे हैं, अब हम पर दया करो, अब हम पर दया करो।
1: इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गए और दिया के टिमटिमाते हुए प्रकाश में बचे हुए पत्रों को उलट पुलट कर देखने लगे। वे उछल पड़े और उमंग में भरे हुए पागलों की भांति आनंद की अवस्था में 2-3 बार कूदे, तब दौड़कर गिरजा को गले लगा लिया और बोले,
2: प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो अब तो बच जाएगी गिरिजा, अब तो बच जाएगी।
1: उन्मत्तता में उन्हें ये एकदम नहीं जान पड़ा कि गिरिजा अब नहीं है, केवल उसकी लोथ है। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इसी तेजी से आए मानो पांव में पर लग गए, परंतु यहां उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा,
2: लीजिए, वो पत्री मिल गई, संयोग की बात है, नहीं तो 70 लाख के कागज दीमकों के आहार बन गए।
1: आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस पत्री को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वो उसे फाड़कर फेंक न दे। यद्यपि ये संदेह निरर्थक था, किंतु मनुष्य कमजोरियों का पुतला है। ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से पत्री को लिया और मशाल के प्रकाश में देखकर कहा,
0: अब मुझे विश्वास हुआ, ये लीजिए, आपका रुपया आपके समक्ष है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए।
1: ये कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें से 1-1 हजार के 75 नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था, नाड़ी तीव्र गति से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकन्नी दृष्टि से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है।

और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की, केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और अपने जेब में डाल लिया।

0: वही वही अमावस्या की रात्रि थी। स्वर्गीय दीपक भी धुंधले हो चुके थे। सूर्य नारायण के आने का आभास हो रहा था। उदयाचल फिरोजी बाना पहन चुका था। अस्ताचल में भी हल्के श्वेत रंग की आभा दिखाई दे रही थी। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर चले। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गए। अंतःपुर में ही उन्होंने शालिग्राम के सम्मुख मनसा वाचा कर्मणा सिर झुकाया और तब शेष चिट्ठी पत्रियों को समेट कर उसी मखमली थैले में रख दिया। किंतु अब उनका यह विचार नहीं था कि संभवतः उन मुर्दों में भी कोई जीवित हो उठे। वरन जीविका से निश्चिंत हो अब वे पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे। उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे।
1: अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इससे मेरी और गिरिजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी।
0: उन्हें क्या खबर थी कि गिरिजा की जिंदगी पहले कट चुकी है। देवदत्त के दिल में ये विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरिजा इस आनंद समाचार को सुनेगी उस समय अवश्य उठ बैठेगी। चिंता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है, जिसे भरपेट कभी रोटी नसीब न हुई, जो कभी नैराश्यमय धैर्य और निर्धनता के हृदय विदारक बंधन से मुक्त न हुई, उसकी दशा इसके सिवा और हो ही क्या सकती है। ये सोचते हुए वे गिरिजा के पास गए और आहिस्ता से हिलाकर बोले,
1: गिरिजा गिरिजा आंखें खोलो, देखो ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की है। गिरिजा गिरिजा कैसी तभी।
0: किंतु जब गिरिजा तनिक भी ना मिनकी तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुंह की ओर देखा। हृदय से करुणात्मक ठंडी आह निकली। वे वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों से शोणित की बूंदें सी टपक पड़ी।
1: क्या ये संपदा इतने महंगे मूल्य पर मिले है? क्या परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी जान का मूल्य दिया गया है? ईश्वर तुम खूब न्याय करते हो। मुझे गिरिजा की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता नहीं। ये सौदा बड़ा महंगा है, सौदा महंगा बड़ा महंगा।

अमावस्या की अंधेरी रात गिरिजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनघट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थीं। पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डालकर अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी, कोई खम्भों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुरा

0: कर प्रेम रहस्य की बातें करती थी। बूढ़ी स्त्रियां पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थीं कि घंटे भर हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी। किंतु राज वैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे। इस भीड़ भब्बड़ से कुछ दूर पर दो तीन सुंदर किंतु मुरझाए हुए नवयुवक टहल रहे थे और वैद्य जी से एकांत में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में पंडित देवदत्त, नंगे सिर नंगे बदन, लाल आंखें, डरावनी सूरत, कागज का एक पुलिंदा लिए हुए दौड़ते हुए आए और औषधालय के द्वार पर इतनी जोर से हाँक लगाने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को पुकार कर बोले कि दरवाजा खोल दे। कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ निद्रा का रोग था जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कम न होता था। आप ऐंठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले,
1: वैद्य जी, ये 75,000 के नोट है, ये आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। अब आप चलकर गिरिजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो केवल एक बार आंखें खोल दे। ये उसकी एक दृष्टि पर न्यौछावर है, केवल केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य की जान से प्यारे हैं, वे आपके समक्ष हैं। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। इन रुपयों से कई गुना प्यारी
0: है। वैद्य जी ने लज्जा में सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा,
2: मुझे मुझे शोक है, मुझे अत्यंत शोक है। सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूं, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि न होगी। मुझे शोक है, सचमुच शोक है।
0: ये बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकली थी।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत पात्रिकर, ठाकुर नवयुवक, दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अंतराल का वक्त हुआ खत्म और कार्यक्रम चल रहा है
1: सखी सहेली और हमारे साथियों ने कथा सुधा में आनंद लिया होगा और अब है हम लोगों के आपस में बात करने की बारी और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद है यहाँ पर बहुत जरूरी शिक्षक
0: ज्यादा जरूरी
1: है ना। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा को बेहतर और अच्छा बनाता है प्रभावशाली बनाता है तो उसमें आपस में एक दूसरे से बात करना जिसे कहते हैं ना संवाद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो विद्यार्थी के अंदर अपनी जिज्ञासाएं और समस्याएं होती हैं वो खुल करके अपने शिक्षक से बात करते हैं अपने उनके सामने अपनी बात रख पाते हैं और शिक्षक भी जो होते हैं उनकी कठिनाई को समझकर उनका सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और

0: इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सीखने में रुचि भी पैदा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इतने सारे संदेश आए हैं इस विषय पर हमारे सभी श्रोताओं के। एक संदेश ये कहता है कि शिक्षा का ज्ञान और विद्यार्थी की जिज्ञासा जब संवाद के माध्यम से मिलते हैं तो सीखने की प्रक्रिया और भी सुंदर बन जाती है। संवाद न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विश्वास और अपनापन भी गहरा हो जाता है।
0: बिल्कुल। और हमारी एक साथी लिखती है कि मैं स्वयं एक शिक्षिका रही हूं, मुझे पता है कि हर विद्यार्थी के मन में अनेक प्रश्न होते हैं, उसके लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद जरूरी है। जब विद्यार्थी बिना डर के शिक्षक से अपनी बात कहता है तब सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और संवाद के माध्यम से विद्यार्थी बिना झिझक अपने सवाल, कठिनाइयां और विचार शिक्षक के सामने रखता है। इससे शिक्षक भी विद्यार्थी की रुचि, क्षमता और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार ही उन्हें सही सलाह देते हैं। वैसे सही बात है दीपा, जो टीचर होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं।

0: अपनापन भी गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी लिखती है कि मैं स्वयं एक शिक्षिका रही हूं और मुझे पता है कि हर विद्यार्थी के मन में अनेक प्रश्न होते हैं, उसके लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद जरूरी है। जब विद्यार्थी बिना डर के शिक्षक से अपनी बात कहता है तब सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और संवाद के माध्यम से विद्यार्थी बिना झिझक अपने सवाल, कठिनाइयां और विचार शिक्षक के सामने रखता है। इससे शिक्षक भी विद्यार्थी की रुचि, क्षमता और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार ही उन्हें सही सलाह देते हैं। वैसे सही बात है दीपा, जो टीचर होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, तो ये नहीं कि आप एक तरह से बोल रहे हो और हर बच्चे वही समझे। आपको हर बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना पड़ता है, इसको किस भाषा में, सरल भाषा में समझ में आता है, कोई आपकी पहली ही भाषा को समझ जाता है, तो बच्चों के हिसाब से भी हमें समझाना पड़ता है।
0: बिल्कुल। और जैसे ऐसा लगता है उत्तर ही इस बात का आ गया है एक संदेश के द्वारा, कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि छात्र को मानसिक और भावनात्मक संबल भी देता है, जिससे छात्र परीक्षा के तनाव या निजी समस्याओं को आसानी से साझा कर पाता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए ज्ञानवर्धक संवाद के परिणाम स्वरूप ही श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई है, जो आज भी संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। बहुत अच्छी सी आपने बात लिखी है।
0: बहुत अच्छे से बताया। और ये भी बात दिखी है संदेश के माध्यम से हम तक पहुंच रही है, ये कह रहे हैं कि जब शिक्षक और विद्यार्थी आपस में लगातार बातचीत करते हैं तो छात्रों के मन का डर और झिझक खत्म हो जाता है और विद्यार्थी बिना किसी संकोच के अपने सवाल और समस्याएं शिक्षक के सामने रख पाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये बहुत जरूरी, अगर डरते ही रहेंगे तो अपने डाउट्स हैं या हमें कुछ पूछना है, न सिर्फ अपने जो किताबी ज्ञान है उसके लिए नहीं, शैक्षणिक जो ज्ञान है उसके लिए नहीं, कुछ जीवन में भी कभी कुछ ऐसा लगता है ना लाइफ में कि हमें ये करना है नहीं करना है, कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो हम घर में नहीं बोल पाते।
1: बिल्कुल।
0: और हम लेकिन टीचर से थोड़े से नजदीक रहते हैं और उन्हें बता पाते हैं तो वो हमें सही राह दिखाते हैं।
1: बिल्कुल। और तुम्हें याद होगा कि क्लास में जब कुछ बच्चे जिनको लगता है कि थोड़ा सा डर लगता है, संकोची होते हैं, याद नहीं हुआ, तो वो पीछे बैठ जाते हैं जाकर के। और कभी कभी जो शिक्षक भी इतने होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कि वो पीछे वाले से इशारा करते हैं कि तुम
0: उठो, नजर
1: पैनी होती नजर। तो देखते हैं अब हमारे साथी अगले साथी क्या लिखते हैं, कि लिखते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद शिक्षा की बुनियाद है। जब एक शिक्षक और छात्र आपस में खुलकर बातचीत करते हैं तो न केवल ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर होता है बल्कि छात्र का सर्वांगीण विकास भी होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद के क्लासरूम संवाद दस्तावेजों की तरह ही हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक होना चाहिए। यह संवाद ही शिक्षा को बोझिल प्रक्रिया से हटाकर एक आनंददायक अनुभव में बदलता है।
0: बिल्कुल। जब ये पूरा जो यात्रा है शिक्षण की, जब ये ऐसी सुमधुर हो जाए और इतनी निडर वाली हो जाए ना, तो हर चीज हमारे दिमाग में एकदम साफ सुथरी होती है। और इसी बात को आगे एक और संदेश के द्वारा हमारे श्रोता बताते हैं कि जब शिक्षक विद्यार्थी से खुलकर बातचीत करते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं और समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे बिना झिझक अपने विचार, प्रश्न और कठिनाइयां साझा कर पाते हैं। वहीं शिक्षक भी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हाँ, अगर बोलेंगे ही नहीं, बच्चे बताएंगे नहीं, तो टीचर्स भी कर क्या लेंगे।
1: बिल्कुल।
0: बच्चे का बोलना, स्टूडेंट का बोलना बहुत जरूरी है ना।
1: कभी
0: बताएंगे ही नहीं, चुप ही रहेंगे तो एक शिक्षक या शिक्षिका बताए क्या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो या किस तरह उन्हें बोले या बताएं कि समझाएं।
1: नहीं, कई बार दीपा क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं ना, वो डरे सहमे से रहते हैं, उनको बोलने में लगता है मैं ये बोलूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए,
0: कभी कभी डरते भी सबके सामने बोलने।
1: तो जो टीचर होते हैं ना, वो इतने जो पारखी होते हैं कि वो समझ भी जाते हैं, उस बच्चे को बुलाकर प्यार से करते हैं तो वो उसको हैंडल भी कर ले जाते हैं, समझा पाते हैं। और शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद रूपी सेतु जरूरी, हमारे साथी लिखते हैं, जो एक दूसरे के विचार रूपी प्रवाह को पार करवाने में आसान बनाता है। आपसी विश्वास बढ़ता है, समय समय पर फीडबैक मिलने पर सीखने की प्रक्रिया आसान बन जाती है, मानसिक तनाव में कमी आ जाती है। प्रोत्साहन भरे शब्द और सहयोग छात्रों में नेतृत्व गुण के साथ आत्मसम्मान को जगाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे हम विविध भारती के साथ कमेंट के द्वारा एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करते हैं और कर रहे हैं, उद्घोषक हमारे विचार को जब वाचा देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, आपके विचार जब हमें मिलते हैं तो उसमें भी ज्ञान की बातें छुपी होती है और हम लोग को भी ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है,
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कह रहे हैं और आप अनुसरण कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: आपकी कई बातों का हम अनुसरण करते हैं और कई बार तो आपके संदेश हम संभाल के रख लेते हैं।
1: हाँ, आगे काम आएंगे।

0: पाएंगे, है ना। और बात शिक्षक और विद्यार्थी की हो रही थी, जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेता है या लगता है कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तो नहीं हम सब कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बनोगे एक दिन, और हम उस दिन जब तुम बड़े बन जाओगे तो हमारे पास आना या हम तुम्हारे पास आएंगे। तो कहीं
1: देखो, आज हम विश्व शिक्षक दिवस भी है, तो हम लोग ये बातें इसी विषय पर कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमें आगे जीवन में बढ़ने की राह दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं ना। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं
0: है, और संगीत से बड़ा भी कोई शिक्षक नहीं।
1: जी।

0: बिल्कुल नहीं भाई, एक विद्यार्थी कभी अपने शिक्षक को नहीं भूलता है,
1: वो
0: चाहे कितनी भी आसमान की ऊंचाइयां छू ले।
1: बिल्कुल, और भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है आगे बढ़ने का। और जब देखो घर साफ होता है तो हमारा भी मन करता है उसमें आराम से सुकून से बैठने का, और जब बच्चों का कमरा साफ सुथरा होता है तो बच्चों का पढ़ने में भी मन लगता है ना।
0: बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, भले छोटी छोटी सी बात हो लेकिन सच में जब साफ सुथरा घर हो, आपकी टेबल बिल्कुल साफ सुथरी हो, आपके करीने से सारी किताबें लगी हैं, आपके जो स्टेशनरी का सामान है सब एक तरफ अच्छे से रखा है, और सुबह का वक्त हो तो सच में ऐसा लगता है बस बैठ जाओ और अब हम अगला एक घंटा नहीं।

0: लेंगे,
1: नहीं लेंगे तो हम फिलहाल अभी नहीं हिलेंगे। हम कमेंट्स पर जाते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि स्वच्छ घर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगता बल्कि मन को भी सुकून देता है। साफ सुथरा वातावरण तनाव कम करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। घर की सफाई के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालें। एक ही दिन में पूरी सफाई करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम बांटें। अनावश्यक सामान जमा न होने दें। जो चीज लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है उसे जरूरतमंद को देना या हटाना घर को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका है।
2: बिल्कुल सही कहा। और घर में हर सामान की एक निश्चित जगह होनी चाहिए। इस्तेमाल के बाद चीज को वापस उसी जगह पे मंजरी रख देना चाहिए तो अच्छा रहता है। इससे क्या समय की भी बहुत बचत हो जाती है और सुबह के वक्त अगर कुछ मिनट खिड़की दरवाजे खोलकर ताजी हवा और धूप को भी अगर हम घर में आने दें तो देखो घर का वातावरण कितना खुशनुमा महसूस होता है।
1: बिल्कुल। और रसोई की सफाई पर विशेष ध्यान दें। सिंक, गैस चूल्हा, प्लेटफॉर्म और कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ करें। बाथरूम की सफाई को टाले नहीं। गीलापन और नमी लंबे समय तक रहने से दुर्गंध और गंदगी बढ़ती भी है। घर में कम सामान ज्यादा खुली जगह रखने की कोशिश करें। खुला और व्यवस्थित घर मन को भी हल्का महसूस कराता है और सफाई करते समय पर्यावरण पर ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा पानी और केमिकल वाले क्लीनर इस्तेमाल ना करें।
2: बिल्कुल। और हो सके तो संभव हो तो घर में हरे पौधे लगाने चाहिए घर के, क्योंकि पौधे जो हैं वो घर की सुंदरता बढ़ाने में देखो और वातावरण को भी कितना जीवन बनाते हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
2: और सफाई सिर्फ फर्श और फर्नीचर की नहीं हो बल्कि हमारे घर में पर्दे हैं, फिर पंखे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, फिर घर दरवाजों के हैंडल और पर्दों के वो जो रॉड होते हैं सब कुछ साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, खासतौर पे वो स्विच बोर्ड सबकी उंगलियों के
1: निशान पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट तुमने किया।
2: करना बहुत जरूरी है।
1: और घर को सुगंधित रखने के लिए बहुत तेज कृत्रिम खुशबू के बजाय फूलों, कपूर या हल्की प्राकृतिक खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। साफ सफाई पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, सिर्फ घर की महिलाओं की नहीं है। बिल्कुल सही बात लिखी।
2: अब देखो घर में ऐसा नहीं कि हम बात करें तो सखियां कहेंगी आप तो कह रही ये भी साफ कर दो, ये भी साफ कर दो। नहीं, सबको बांटिए। जब बच्चे जिस दिन घर पे छुट्टी होते हैं उनको कहिए उनका कमरा वो खुद साफ करेंगे। अगर उनका कमरा नहीं भी है तो जिस जगह पे वो बैठते हैं उनका बैग हो गया या जहां पर उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह रखते हैं, उनके कपड़े रखे जाते हैं, वो अलमारी का वो खन या शेल्फ उनको बोल दीजिए कि आपको ये साफ करना है। इसी तरह से घर के जो हमारे श्रोता भाई सुन रहे हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा सा अगर आप मदद कर देंगे ना, आप देखिए घर की महिलाओं के चेहरे पर अगर हंसी ना आई तो आप आकर हमें डांट सकते हैं
1: और बढ़िया आपको चाय भी मिलेगी पीने को। और हमारे साथी और लिखते हैं कि सुकून स्वच्छ घर, ये वाक्य पढ़कर ही कितना सुकून मिल रहा है। हमारा घर हो या कार्य क्षेत्र या फिर सार्वजनिक स्थानों, स्वच्छता हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वच्छता है जहां तंदुरुस्ती है, वहां ये लिखते हैं। और स्वच्छता जहां होती वहां पे बरकत होती। बहुत सही बात है। हमें घर के साथ साथ जो चीजें आपने लिखी जहां जहां के बारे में, उन सबको भी हमारा ही कर्तव्य कि हम उन्हें साफ रखें।
2: अच्छा, एक और संदेश कहता है कि साफ सुथरा सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मन की वो अवस्था है जहां शारीरिक थकान बहुत कम महसूस होती है। जहां धूल नहीं होती वहां बेचैनी भी नहीं टिक पाती है, क्या बात है। और जहां हर चीज अपनी जगह पर है वहां विचार भी बिखरते नहीं। ऐसे घर में सुबह की चाय की खुशबू, आंगन की धूप और शाम की शांति ज्यादा गहरी लगती है, क्योंकि सफाई आंखों को ही नहीं आत्मा को भी हल्का कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्वच्छता से घर बड़ा नहीं होता पर दिल बड़ा हो जाता है और वहीं से सुकून जन्म लेता है। सुकून भरे स्वच्छ घर की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि वो बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है। और आपके इस कमेंट ने तो ऐसा लगता है सब कुछ सारी बात एक उसमें डाल दी।
1: बिल्कुल। हम एक साथी लिखते कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है सो उन्हें सैटरडे संडे छुट्टी होती है। कल संडे और सैटरडे उन्होंने पूरे घर की सफाई की, साथ में मैंने और मेरे बेटे ने हेल्प करी। गुजरात में ऐसा मानते हैं कि दिवाली से पहले नवरात्र में माता रानी जी के आगमन से घर की पहले ही घर की साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखा है। अब समय आ ही चुका है कि माता रानी भी आने वाली है तो हमें तो बहुत ध्यान रखना है।
2: और एक और हमारे श्रोता भाई श्रोता ने हमें लिखा है कि गुजराती में उन्होंने एक कहावत लिखी कि सुंदरता पामवा माटे सुंदर बनवू पड़े, यानी कि सुंदरता पाने के लिए सुंदर बनना पड़ता है। फिर ये सुंदरता भीतर से हो या बाहर से दोनों तरफ आवश्यक है। इसी तरह घर जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है उतना ही अंदर से सुंदर हो तब सोने पे सुहागा हो जाएगा।
1: भाई देखो, घर भी सुंदर हो, आपका मन भी सुंदर होना चाहिए। आपके घर में जो भी आने वाला है उनका स्वागत आप मन से दिल से करते हैं तो वो घर और भी सुंदर लगेगा, है ना। और एक लिखते हैं कि सुकून भरा स्वच्छ घर जब साफ और व्यवस्थित होता है तो वहां कदम रखते ही दिन भर का तनाव और मानसिक थकान जो है पल भर में काफूर हो जाती है। दरअसल सफाई सिर्फ धूल मिट्टी हटाना नहीं बल्कि जीवन की उलझनों को

0: हार कर सुकून को आमंत्रित करना है। एक स्वच्छ घर वो है जहां पावन मतलब स्वच्छ घर का वो पावन कोना है जहां हमारी आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। बहुत सुंदर सी बात लिखी है और बुहार कर जो शब्द आया है ये बहुत समय बाद सुनने को मिला है तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा, एक शायद ये हमारे श्रोता भाई ने संदेश लिखा है, इन्होंने कहा दोपहर में 2 मिनट निकालकर अपनी मेजों की जांच करें, रैपर है, रसीदे हैं या कप वहां पड़े रहते हैं ना, क्योंकि ऑफिस में भी सुबह की चाय हो ही जाती है, वो सब कुछ हटा दें, सतह को पोंछ लें। दोपहर में टेबल को फिर से सेट करने की से जगह जो है वो ताजा रहती है और सामान फैलने से रुकता है। बिल्कुल सही कहा भाई। अब अगर आप ऑफिस पे हैं या कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपका सिटिंग जॉब है तो ये बीच बीच में 2-2 मिनट निकाल के भी ऐसी सफाई खुद कर दें। कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने के लिए कि ये कप हटाओ, ये ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, खुद कर देते हैं।
0: कई बार तो क्या होता है कि आपकी जो डाइनिंग टेबल पे है उस पर आपने कोने में सामान रखा है लेकिन धीरे धीरे होते होते शाम होते होते वो आधी डाइनिंग टेबल को कवर कर देता है।
1: हर घर में डाइनिंग टेबल
0: कोना भरे रहते जमाने के लिए, क्योंकि लगता है ये चीज भी यहीं से ले लेंगे, अचार भी ले लेंगे, नमक भी ले लेंगे, चटनी भी ले लेंगे। अरे भाई इसको थोड़ा किनारे रखो,
1: भले आप रखिए उस पे सामान लेकिन वो सिर्फ सामान जमा करने की जगह ना हो जाए। कई घरों में ऐसा होता है कि टेबल तो है, डाइनिंग टेबल तो है लेकिन सब नीचे बैठ के खाते हैं, बेशक खाइए लेकिन डाइनिंग टेबल को ऐसे सामान उठा करके ला के
0: अलमारी ना बनाइए। चलो एक गीत सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: मंजरी उस संदेश के बारे में बता रही थी, पढ़ के बताओ।
4: हाँ, हमारे साथी लिखते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा हो, घर के सभी सदस्यों की सक्रिय सहभाग से ही साफ सुथरा और सुंदर रहता है।

0: अच्छे संस्कार और आदतों से सजे स्वच्छ सुंदर घर में भगवान के सामने रखा पवित्र मंगल दीप, कोने में रखा सुगंधित फूलों का गमला और आंगन या बालकनी की प्रसन्न तुलसी मंजरी भी मन को सुकून देती है। बहुत इन्होंने अच्छी सी बात लिखकर भेजी, लेकिन अब हम इस संदेश के साथ में, खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ते हुए व्यंजन की ओर चलते हैं कि बड़ी देर से
1: हमने साफ सुथरा कर लिया सब,
0: खाना भी तो पका ले,
1: भूख लगी
0: है ना। और हमारे को एक साथी लिख भी रहे थे कि हम जो है छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं अक्टूबर में, तो भाई आप जाइए और वहाँ पे जाकर व्यंजन खा के आइएगा
1: और बताइएगा कैसा लगा।
0: तो हमारे एक साथी ने भेजा है चौसेला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है, खासतौर से त्योहार पर बनाया जाता है। इसकी सामग्री है कि चावल का आटा 2 कप, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन या जीरा 1 छोटा चम्मच, और जो तेल लेना है आप आटा गूंदने के लिए, तलने के लिए वो अंदाज से ले लीजिए, गर्म पानी आवश्यकता के अनुसार। चौसेला बनाने की विधि है कि एक बर्तन में पानी उबाले और उसमें नमक, अजवाइन या जीरा मिला लें, उबलते पानी में ही थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालें और चम्मच की सहायता से चलाएं और उसको फिर ठंडा करें। जब मिश्रण जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए तब हाथों से थोड़ा सा तेल लगाकर इसे नरम आटे की तरह गूंथ लीजिए और ढककर 10-15 मिनट रखिए और आटे की छोटी लोइयां बनाइए। इन्हें दोनों हाथों में से दबाकर तेल से चिकनी की गई पॉलिथीन पर रखकर हल्के हाथों से पूरी बनाएं और या आप चकले पर भी बेल सकते हैं, और एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इन चौसेलों को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक तल लें, और इनको आप हरी धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और बफोरी अगर बनाना है तो उसके लिए देखो इसमें मुख्य रूप से रहता है चने की दाल या मिलीजुली दाल, मूंग मसूर की दाल, उससे तैयार किया जाता है ये व्यंजन। तो इसको बनाने के लिए चना दाल या आप मूंग मसूर की दाल मिक्स ले सकते हैं 1 कप, लहसुन की कलियां 5-6, अदरक ले सकते हैं 1/2 इंच मतलब थोड़ा सा, हरी मिर्च आपके अनुसार 2-3 ले सकते हैं, जीरा छोटा सा 1 चम्मच और हल्दी पाउडर थोड़ी यानी 1/2 छोटी चम्मच, हींग चुटकी भर, नमक आप अपने अनुसार डाल लीजिए और तड़के के लिए लीजिए सरसों, जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा तेल। बनाने के लिए चने की दाल को 4-5 घंटे या रात भर के लिए पानी में आप भिगो कर रख दो। दाल का पानी निकालकर उसे बिना पानी के या बहुत कम पानी से डालकर मिक्सी में आपको दरदरा पीस लेना है। पिसी हुई दाल में अब आप लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, हींग, हल्दी और नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह फैट लेना है। अब एक बर्तन में पानी उबालें, उसके ऊपर तेल से चुपड़ी हुई यानी ग्रीस करी हुई जालीदार छन्नी या जो इडली स्टैंड होती है ना वो रखें। इस पर छोटी छोटी पकौड़ियों के आकार में मिश्रण रख दें। इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक या 15 मिनट तक एकदम मीडियम आंच पर भाप में पकाना है, और जब ये बन जाए तो बफरी को बाहर निकालें और एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके राई, जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का तैयार करें। इसे बफोरी पर आप डालिए और फिर देखिए इसका स्वाद कितना अच्छा लगता है।
0: स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीपा, आज तो पक्का मैं ये बनाने वाली हूँ, है ना,
1: बनाने वाली हूँ। तो देखो मैं भी पक्का एक गीत आपको सुनाने वाली
0: हूँ।

0: आई नहीं बहार। फौजी का बेटा चला है तन के पहली बार, एक फौजी का बेटा चला है तन के पहली बार।
1: आम सुहानी आई खुशियां बन के पहली बार आज कई
2: दीपा तुम तो कह रही थी कि गाना सुनाने वाली, मैंने सोचा तुम गा के सुनाओगी।
3: कहा कि नहीं भाई, जिंदा दिल फिल्म का ये गाना सुनाने वाले।
2: अच्छा,
3: सुनाएंगे गाना।
2: चीटिंग करी है तुमने।
3: नहीं नहीं, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं की है। और देखो हम भले चीटिंग कर ले, लेकिन
2: घड़ी नहीं करने देगी। है ना,
3: नहीं करने देगी। वो कह रही है चीटिंग का गया समय समाप्त।
2: चलो अब दोनों बहने निकलो। चलो तो सभी को चलते चलते हम लोग कहते हैं नमस्कार करते हैं, विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी और
3: जी
2: दीपा मंजरी का नमस्कार बोलो।
3: और मंजरी का नमस्कार।
2: चलो ठीक है, ओके।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह आपने सुना पीसीओडी और आईवीएफ, इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। आइए अब सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग।
1: डॉक्टर साहिबा, आज हम महिलाओं को लेकर उनकी बीमारियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपसे कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को इन बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। डॉक्टर ज्योति, तो अब जीवन के उस पड़ाव की बात करते हैं जिससे हर महिला कभी न कभी गुजरती है
2: जी।
1: और वो समय है मेनोपॉज
2: जी।
1: क्या है ये मेनोपॉज और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और किस उम्र में ये शुरू हो सकता है? एक आम महिला भी ये जानना चाहती है कि मेनोपॉज आखिर है क्या।
2: जी, जैसे ये वर्ड बताता है मेनो पॉज, मेनो यानी पीरियड्स, पॉज

0: यानी बंद होना, स्टॉप होना। एक लेडी के ये जर्नी में जब पीरियड बंद हो जाता है, इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये बंद कितना टाइम तक होना चाहिए, जब हम उसको लेबल करें एज मेनोपॉज, की एक साल जब पीरियड नहीं होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक साल के बाद ही उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसके पहले अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं उसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। तो बेसिकली पीरियड क्यों बंद हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने जो अंडा फूटता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, वो जब फूटना बंद हो जाता है यानी ओवरीज में जो एग्स हैं वो टोटली खत्म हो जाते हैं, तो नेचुरली नहीं है तो फूटेंगे नहीं तो पीरियड नहीं आएगा, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये जो पीरियड है उसके पहले का पीरियड, जिसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं, एक वो टाइम है जब काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली ये समझना जरूरी है कि मेनोपॉज में क्या एग्जैक्टली होता है, कि एक जो मैंने बताया अंडे खत्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ ओवरीज में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं। तो ओवरीज वो हार्मोन सिक्रीट करती है। जब मेनोपॉज में जो ईस्ट्रोजन है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है धीरे धीरे, एक्चुअली जो पेरीमेनोपॉज है यानी ईस्ट्रोजन लेवल की प्रमाण मात्रा कम होने लगती है, और एक टाइम आता है जब वो टोटली बंद हो जाता है सिक्रीट होना ओवरीज में से, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो इसकी उम्र क्या होती है, किस उम्र में शुरू हो सकता है?
0: सो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया 45 to 50 ईयर्स है। उसके पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है।
1: कई बार बड़ी उम्र की महिलाओं से जब बातचीत होती है तो वो कहती हैं कि उन्हें अभी भी जो है मासिक धर्म होता है।
0: जी जी।
1: तो कई बार सवाल होता है कि अरे आपको भी मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ?
0: जी।
1: तो नहीं होता
0: जी,
1: तो इसकी उम्र बड़ी भी हो सकती
0: है। यस, बड़ी भी हो सकती है। सो कभी कभी 55-56 तक भी लेडीज को पीरियड आ सकता है।
1: अच्छा, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
0: नहीं, ये जेनेटिक है, मतलब उनके अंडे अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो इसलिए वो अभी भी मेंस्ट्रुएट हो रही हैं।
1: तो अच्छी बात क्या है, सही समय पर मेनोपॉज हो जाना चाहिए या लंबे समय तक आपको मासिक धर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं?
0: कोई भी चीज कम या ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अगर पीरियड जल्दी बंद हो जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत लेट तक भी चलता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो इट हैज टू बी जो रेगुलर टाइम में होना चाहिए वो टाइम पे हो तो बेटर ही है। तो अगर वो जल्दी बंद होता है यानी 40 के पहले अगर पीरियड बंद हो जाता है उसको हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, और अगर लेट बंद होता है 58-60 तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। जी, प्रीमैच्योर मेनोपॉज यानी वो जल्दी वो सिम्टम्स आना, वो भी लेडी के लिए अच्छा नहीं है। और जब लेट होता है पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक पीरियड जा रहा है, दैट मींस बॉडी में ईस्ट्रोजन अभी भी है लंबे टाइम तक, तो इन लेडीज को थोड़ा सा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
1: यानी कि समय पर मेनोपॉज होना भी बहुत
0: जरूरी है।
1: आपसे महत्वपूर्ण बातचीत हमारी चल रही है डॉक्टर साहिबा। एक गीत सुन लें आपकी पसंद का।
0: जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत आप सुनना चाहती हैं। सुनते हैं ये गीत।

0: तो जैसे कहते हैं हॉट फ्लैश होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग होना जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण मेनोपॉज
1: ही? ये मेनोपॉज ही है। तो इनफैक्ट आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं मेनोपॉज के उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मेनोपॉज जैसे मैंने बताया कि बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होके एक समय बंद हो जाना, वो मेनोपॉज है। पेरी मेनोपॉज टू मेनोपॉज। ईस्ट्रोजन जो ए हार्मोन जो है वो सिर्फ ओवरीज या सिर्फ रिप्रोडक्टिव यानी यूट्रस रिलेटेड या ओवरीज रिलेटेड या गायनाक रिलेटेड नहीं है। ये ईस्ट्रोजन बहुत सारी ऑर्गन्स पे बॉडी में काम करता है। आई वुड से राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर टोनेल्स, मतलब बालों से लेके पांव के नख तक ये ईस्ट्रोजन काम करता है। तो जब ये फ्लक्चुएशन आने लगते हैं तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, जो शायद लेडीज को पता भी नहीं होता है कि दे आर गोइंग थ्रू दिस। तो जैसे पीरियड्स जब बंद होने वाले होते हैं या बंद होते हैं तो लेडीज काफी टाइम ये एक बाल गिरना ये एक समस्या उनको हो जाती है कि बाल काफी झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, टेक्सचर उनका कोर्स हो गया है, ये एक है। फिर चिड़चिड़ापन जैसे जहां आपने बताया ब्रेन पे अफेक्ट करता है, तो मेमोरी लॉस की, अरे मैंने गैस पे कुछ रख दिया है और मैं भूल गई, या मैं ये रूम में आई हूँ लेकिन मैं क्यों आई हूँ मुझे याद नहीं है।
0: अच्छा जी।
1: या तो ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इरिटेबल होना, हॉट फ्लशेस, ये वेजोमोटर मोटर सिम्टम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लगना या पसीना पसीना हो जाना या बहुत गर्मी लगने के बाद बहुत ठंडी लगना, ये वेजोमेटर सिम्टम्स है। फिर ये दांतों पे भी अफेक्ट करता है, आंखों पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, आपके बोन्स को भी अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। जैसे हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो लेडीज काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन जब मेनोपॉज नहीं होता है, जब वो रेगुलर पीरियड्स में रहती हैं, जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो हार्ट को काफी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है। हार्ट अटैक के रिस्क लेडीज को पीरियड्स मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफी कम रहता है, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है।
0: अच्छा जी।
1: तो बेसिकली जो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होने लगते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हार्ट अटैक मतलब क्या है कि हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, राइट। तो ये हार्ट में हो सकता है। बोन्स को स्ट्रांग रखता है यानी बोन्स में जो कैल्शियम

0: डेपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है. तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मसल मास लूज होने लगता है. यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे थे पहले समझो 15 मिनट में, अभी आपको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग रहा है. आप अभी बोल रहे हैं कि क्यों मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके मसल्स, अब जो सार्कोपेनिया बोलते हैं उसको, कि मसल मास कम हो गया है तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है. तो ये भी एक बड़ी समस्या है. यानी जो अपने सीनियर्स हैं, जो अगर ये चीज को नजरअंदाज करते हैं, मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो काफी टाइम हम देखते हैं व्हील चेयर में है या बहुत स्लो चल रहे हैं, एज कम्पेयर टू उनके जो फॉरेन काउंटर पार्ट हैं, जो हमारे अब्रॉड लेने वाले सीनियर सिटीजन हैं, वो इस चीज को जान के उसको बहुत उस पर ध्यान दे के अपने मसल मास को स्लोली, मतलब लॉस बहुत कम होता है, तो वो काफी हद तक, काफी एज तक 75, 80, 85 तक कितने एक्टिव रहते हैं. तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसल लॉस, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉज. तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये एक समस्या हो सकती है मेनोपॉज के बाद. और कैंसर्स के रिस्क भी थोड़ा से बढ़ सकते हैं मेनोपॉज के बाद.
1: अच्छा जी, ध्यान रखना होगा.
0: जी डेफिनेटली, डेफिनेटली
1: ध्यान रखना होगा. जी बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि जिस मेनोपॉज के बाद हम सोचते हैं कि अब बहुत सारी समस्याओं से हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि हर महीने महावारी आना महिला को बहुत परेशान कर देता है और खासतौर से वर्किंग वीमेन के सामने बहुत दिक्कत आती है. तो उसे लगता है कि चलिए अब इन बातों से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे. लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आप बता रहे हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याएं और भी खतरनाक हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं रखा. तो वर्किंग वीमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, अगर वो इस मेनोपॉज के लक्षण से गुजर रही हैं, ऑफिस में भी वो इतना स्ट्रेस उसको होता है, घर पे आके भी काम करना पड़ता है, तो वो अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखे, जो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में है. आपने कहा कि शरीर में आने वाले जो बदलाव हैं, आपके अंदर एक सुस्ती आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे.
0: तो अगर ये सिम्टम्स, मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम ईस्ट्रोजन्स दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए, जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं. बट डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गायनेक ही दे सकते हैं, आप अपने आप से ना ले, क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज्यादा हो सकते हैं. तो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, आपके डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए. बट ज्यादातर इंडिया में विलेजेस में तो आई एम श्योर इतने लोग, ये उनको पता भी नहीं होगा कि ये अवेलेबल है, और शायद वो लेना भी नहीं चाहेंगे, वो एक्सेप्ट भी बहुत इजिली कर लेती हैं. और दूसरा है कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये अगर हम करते हैं, आई कैन नॉट, मतलब इस चीज का इम्पोर्टेंस मैं तो क्या ही आपको बताऊं, कि अगर ये आप रेगुलरली, जो वर्किंग वुमेन के जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, अगर वो अपने बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, डाइट, इस पे अगर ध्यान दें, तो काफी हद तक अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में रख सकती हैं. और अगर जरूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, बट एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन.
1: जी बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये थेरेपी, क्योंकि आम महिला इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम ये थेरेपी होती भी है. तो डॉक्टर साहिबा, जब हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, मेनोपॉज के बाद हमें लगा कि ठीक है अब हम फ्री हो गए हैं किसी भी तरह का मासिक धर्म से, हम अपने आप को मुक्त पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी महिला को दोबारा ब्लीडिंग हो कुछ समय बाद, महीनों बाद, तो क्या उसे सामान्य समझना चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आई है.
0: डेफिनेटली ये काफी कॉमन है कि आपका पीरियड मासिक बंद हो गया है, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, और सडनली 4 साल के बाद पीरियड आने लगा है. तो ये आम बात भी हो सकती है कि कुछ भी ना हो जस्ट, या समथिंग एज सीरियस एज कैंसर भी हो सकता है. तो ये डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने गायनेक के पास जाके ये इसका सोल्यूशन, सोनोग्राफी अगर करना चाहे वो, या बायोप्सी करना चाहे, तो डेफिनेटली करना चाहिए.
1: जी तो चलिए गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं.
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए.
1: क्या बात है. लेकिन यहाँ आप हमारे मरीजों की जान बचाने आई हैं. गाना हम आपको जरूर ये सुनाने वाले हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, उमराव जैन फिल्म से ये गाना,
0: आशा भोसले.
1: जी आशा भोसले की आवाज में बहुत सुंदर गजल है, सुनते हैं.

0: डॉक्टर साहिबा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम आ गए हैं जब बात मेनोपॉज की चल रही है, और आप अभी बता रही थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, आम महिला तो बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस विषय पर बातचीत नहीं करती हैं कि क्या है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या है ये थेरेपी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, और इसे कब लेना आवश्यक हो सकता है?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत हॉट फ्लशेस हैं, या पेशेंट को एक्चुअली शी वांट्स कि मेरा वजन बढ़ रहा है, या मेरी स्किन लूज हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मतलब इफ शी इज डिमांडिंग कि मुझे रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, डिप्रेशन में जा रही है, या ऐसी कोई भी, मतलब अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है मेनोपॉज के कारण, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सिवियर है, मतलब हो रहा है, या उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स है, तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो सामने से पूछते हैं कि हमको लेना है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैचेस होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के पैचेस होते हैं, या क्रीम होती है, या टैबलेट्स होते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो दैट मीन्स आर्टिफिशियली हम ये एस्ट्रोजन हार्मोन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके साथ हम

0: प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी देते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, ताकि ईस्ट्रोजन जब ज्यादा होता है तो मैंने बताया था कि कैंसर का रिस्क है, मैंने बोला था कि जो लेडीज को लेट पीरियड तक रहता है तो दे हैव, तो जब अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो उनको स्लाइट रिस्क ऑफ कैंसर रहता है, तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी साथ में दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, या प्लेन ईस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स क्रीम्स पैचेस या विथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो गायनेक जैसे अपने हिसाब से डिसाइड करें,
1: हाँ, डॉक्टर अपने हिसाब से तय करेंगे कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है।
0: जी, जी।
1: तो ये कितना लंबा चलता होगा, ये थेरेपी कितने समय तक चलती होगी?
0: मतलब सेफली 2-3 साल तक तो ले सकते हैं, बट अब्रॉड तो विमेन बहुत लंबे टाइम तक भी लेती हैं, 8-10 साल भी ले सकती हैं। जी,
1: तो क्या एक आम महिला इसके खर्च को वहन कर सकती है?
0: यस, देखें मतलब इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट इतनी भी महंगी नहीं है।
1: तो क्या ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें जो बहुत मेहनत करती हैं, हार्ड तोड़ मेहनत करती हैं, उनके सामने भी समस्या आ सकती है क्या? उनके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का
0: नहीं आए, जरूरी तो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो इतनी सहनशील होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी इतनी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको खास कोई जरूरत होती
1: है।
0: जी,
1: मतलब उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा।
0: यस और मेहनत है उनकी, जॉइंट फैमिली में रहना, वो एक एटमोस्फियर, जो फैमिली देसी खान पान, देसी हवा, ऑल दैट,
1: ये सभी मिलकर जो उसे मजबूत बना देते हैं।
0: जी,
1: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे कि चेंजेस आते हैं महिला की जिंदगी में खासतौर से, तो गर्भ के दौरान भी उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर।
0: जी,
1: तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव कौन कौन से होते हैं और उनके शरीर को या मन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं?
0: आफ्टर डिलीवरी बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, ये हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: जी,
0: तो ये एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाता है ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके, और ये कुछ हद तक गर्भ निरोधक भी है, मतलब नेचर ने इतना ब्यूटीफुल ये बनाया है कि अभी ये बच्चे को फीड करिए, बच्चा छोटा है तो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होना चाहिए।
1: जी, जी।
0: और दूसरा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक अभी काफी ज्यादा मैं देख रही हूँ, स्पेशली सिटीज में, कि डिलीवरी के बाद वुमन डिप्रेस हो जाती है, उसका फिगर चला जाता है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे क्या देखभाल 24/7, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना, तो ये भी एक थोड़ा हार्मोनल चेंजेस के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये है तो फिर ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, बहुत रो रही है, या कुछ भी ऐसे लक्षण डिप्रेशन के लक्षण हो, तो उसको नजरअंदाज न करके उसकी ट्रीटमेंट लें।
1: यानी डिलीवरी के बाद भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं कि महिला डिप्रेशन में भी जा सकती है।
0: जी,
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, और इसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, या वही जो हमने कहा कि व्यवहार पर इसको टाल कर बात को वहीं खत्म कर देते हैं, कि कुछ समय परेशान है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है, या वर्किंग वीमेन है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इसको डिप्रेशन में ले आए हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमें सोचना होगा।
0: यस, एंड डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है।
1: अच्छी बात। और महिला को अपने हार्मोन की जांच कब कब करवानी चाहिए?
0: हाँ, वैसे तो हार्मोन की जांच रेगुलरली करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और अगर आपकी एज में भी 30 के ऊपर है, 30-32 के ऊपर है, तो AMH करके एक टेस्ट आता है कि अंडे की क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो ये हार्मोनल टेस्ट हम कर सकते हैं, बट अदरवाइज ऐसे रेगुलरली कोई हार्मोनल टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं।
1: अच्छा,
0: एक बहुत मैं इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी हद तक सिटीज में है, जो शायद ग्रामीण क्षेत्र में कम हो, क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, सन एक्सपोजर काफी है, बट सिटीज में विमेन कहाँ धूप में जाती है, इनफैक्ट वो खुद को प्रोटेक्ट ही करती
1: है, महानगरीय व्यवस्था में तो और भी ज्यादा।
0: जी, तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अगर जांच करवाना ही है अपना रेगुलरली, तो ये दो तो जरूर से करवाएं, क्योंकि ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। PCO का प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोला गया है, मतलब बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी भी विटामिन डी

0: डेफिशिएंसी से रिलेटेड कहीं कुछ हद तक है, तो अगर टेस्ट करना है रेगुलरली तो अपनी जो रूटीन टेस्ट, जैसे आफ्टर 40 हम बॉडी चेकअप करवाते हैं. थायराइड इज अनदर हार्मोन जो, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड, अगर मम्मी को थायराइड है या आप पीसीओ हो, आपको डायग्नोस किया है, तो आई एम श्योर कि गायनेक टेस्ट करेंगी ही थायराइड की, तो थायराइड भी रेगुलरली चेक करवाना
1: चाहिए. जी, यानी हमें हर 6 महीने में या साल भर में
0: इज फाइन
1: रूटीन चेकअप होना चाहिए.
0: जी,
1: तो डॉक्टर साहिबा, हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल रूटीन बताइए जो अलग अलग उम्र में हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हो. ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए?
0: कोई भी स्टेज में, चाहे आप युवावस्था में हो या आप मेनोपॉजल हो या आप बच्ची हो, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक स्टेज पे. किशोर अवस्था में भी वैसा ही होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए. तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा
1: दूर रहना
0: अपनी डाइट पे ध्यान रखना, खास करके जो अभी आजकल बच्चे हैं जो पैकेज फूड्स, चिप्स ले लिया, रिफाइंड सब कुछ, मतलब पैकेट खोल के प्रिजर्वेटिव वाला ले लिया, वो अवॉइड करें. होम मेड फूड, वेजिटेबल्स आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं. काफी मदर्स मुझे कंप्लेन करती कि वो वेजिटेबल्स तो खाती ही नहीं है. तो वो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स, जो विटामिन की डेफिशिएंसी, काफी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, फाइबर की डेफिशिएंसी होने ही वाली है. तो ये रेगुलर एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, बच्चे आजकल खेलते भी कहाँ हैं.
1: हाँ, वो खेल बंद हो गया जो हम अपने जमाने में बचपन में खेला करते थे. और इतना खेलते थे डॉक्टर साहिबा कि थकते भी नहीं थे.
0: यस,
1: और घर आकर इतना शानदार खाना खाते थे.
0: यस, और फिर सो जाते थे थक के. यस,
1: चिंता फिक्र नहीं थी, पढ़ाई का इतना बोझ नहीं था.
0: जी जी,
1: और घर का बना हुआ खाना, उस वक्त पिज्जा बर्गर तो होते नहीं.
0: जी जी, बिल्कुल.
1: और आज तो 2 मिनट जो रेसिपी बन गई है.
0: जी,
1: माता पिता भी चूंकि वर्किंग हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए 2 मिनट में कोई खाना बनता है तो बच्चे को खिला दिया जाए. सभी कारण भी मिलजुलकर इन चीजों को देते.
0: यस, तो ये सब एक्चुअली खान पान, लाइफ स्टाइल, मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं तो ये बोलूंगी कि हम इंडिया से हैं जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है.
1: जी,
0: तो हम सबको हर घर में योग होना बहुत ही जरूरी है.
1: बहुत अच्छी बात आप लगातार इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि योग, प्राणायाम और ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है.
0: बहुत. काफी सारे लाइफस्टाइल कोचेस अभी आ गए हैं कि आप अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करें, ना कि वो आए उसके बाद उसके पीछे यू नो कि मैं अब रिवर्स कैसे करूं इस चीज को. इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो ये अगर हम जागरूक हो जाते हैं इस चीज के लिए पहले से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही इस सिखाते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, और खुद भी वो फॉलो करना है. एक्चुअली आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, बट हम सोशल मीडिया देखते देखते कहां 1 घंटा निकल गया, पता भी नहीं चलता है. तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा.
1: बिल्कुल, आपने कहा. और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे, जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था, वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी.
0: जी,
1: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं. कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: There are so many. तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम.
1: ये गाना सुनना चाहती हैं, फिल्म जवानी से ये गाना है और आशा भोंसले और अमित कुमार की आवाजों में. चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत.

0: डॉक्टर ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं IVF पर, जिसकी आप विशेषज्ञ हैं। और लेकिन आम महिला, आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल नावाकिफ हैं कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपत्ति को IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है आज के करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में।
0: जी,
1: ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके।
0: जी।
1: तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक अंडा फूटता है, आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं। हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो वो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है। और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब, और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस, और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेग्नेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन, उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनफर्टिलिटी। तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं।
0: जी,
1: यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इश्यू है, जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है।
0: जी।
1: तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है। IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम चार पांच या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले। तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं। नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है, हम इंजेक्शन देके ज्यादा अंडा, जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफकोर्स, हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं। फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स हैं इंजेक्ट करते हैं।

0: हैं, मतलब मिक्स करते हैं, अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इक्सी बोलते हैं, एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब तो वो इक्सी बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं। फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं, नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज, तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं।
1: जी, तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या। तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशानी हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति है?
0: सबको तो नहीं होती है, कई बार जैसे PCO पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, बहुत वजन है, वजन कम कर दिया, इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं, सिर्फ 5%,
1: अच्छा।
0: तो भी काफी हद तक PCO के जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती है। इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
1: अच्छा
0: जी, अगर स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करके, तो काफी हद तक ये
1: दूर कर दी
0: नेचुरली, यस, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और दूसरे एक IUI करके भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम सिर्फ मतलब नेचुरली है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन वगैरह जैसे मैंने नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही होता है, बट इसमें जो है स्पर्म्स जो है हस्बैंड के स्पर्म्स हम जो नॉर्मली वजाइना में डिपोजिट होते हैं नेचुरल इंटरकोर्स में, यहाँ पे हम IUI में उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर डिपोजिट करते हैं, बस खाली उतना
1: फैसिलिटी।
0: हाँ, तो ये एक छोटा सा हेल्प अगर स्पर्म काउंट कम है।
1: अच्छा, तो कैसे दंपति ये विचार करेगा या डॉक्टर विचार करता है कि IUI से ये काम करना है या IVF को अपनाना है, ये डॉक्टर
0: पहले तो
1: करता है?
0: यस, ये पहले सब टेस्ट होती हैं। ये मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के कारण बच्चा नहीं है, ये नहीं है, ये जो नॉर्मल हमारे लोग समझते हैं कि लेडी में ही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है, काफी हद तक है, वुड से 40% चांस ये है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम,
1: ये समस्या होती है। और ये तो
0: कई बार दोनों में होती है, कई बार हस्बैंड में होती है, लेडी में नहीं होती है,
1: लेकिन
0: ब्लेम होता है खास करके विलेजेस में, तो बहुत ही डिफिकल्ट,
1: गांवों में तो इस बात को आज भी माना जाता है कि महिला बांझ है और उसे बड़ा मतलब बुरा सुनना पड़ता है, इसका दुख होता है। आज इन चीजों से पर्दा उठा है कि महिला और पुरुष दोनों ही बांझपन के कारण हो सकते हैं।
0: और एक दूसरा है कि जो अपने कल्चर में बेटा स्पर्म्स यानी हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बनना, जब बेटी होती है तो सब बोलते हैं कि तेरे कारण बेटी हो, बट एक्चुअली हस्बैंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आइदर अ गर्ल, लड़की या बॉय।
1: जी बिल्कुल सही कहा, इस पर से भी लोगों का अभी काफी जो है भ्रम उतरा है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का,
0: तेरे मेरे होठों पे चांदनी फिल्म,
1: चांदनी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जब हम बात कर रहे थे आईवीएफ की, इससे पहले आपने कहा कि जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी।
1: जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टेन स्पर्म काउंट होना जरूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिलें, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब आईवीएफ ऐसा नहीं है कि आईवीएफ करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ सिर्फ 30-40% ही है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से हो ही जाता है सबको, तो ये भी बहुत
0: जरूरी ध्यान है। तो जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा भी है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है?
1: yes.
0: इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और दंपति में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन विषयों को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
1: जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
0: अच्छा, ठीक है।
1: यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइदर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट्स कराए हैं और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना जरूरी है। बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है और हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है

0: तो वो भी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कपल आके हस्बैंड डिस्कस करें जो भी इश्यूज हैं उसको
1: डॉक्टर के सामने
0: रखें और फिर उससे डील करें, क्योंकि ये ज्वाइंट डिसीजन होना चाहिए कि और दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे।
1: और मेल ईगो यहाँ पर नहीं आना चाहिए,
0: नहीं आना चाहिए।
1: जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
0: ये जो फर्टिलिटी जो है ये मैक्सिमम जो है ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती है, अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद जरूरत पड़े, वैसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एग फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए तो आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल लें, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देर आर सर्टन डिजीजेज लाइक थैलेसीमिया जो एक ब्लड डिसऑर्डर है, जहां पे आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सर्टन टेस्ट करते हैं, तो काफी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप अवेयर होने चाहिए उस चीज के बारे में, सर्टन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब, तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी लेट हुई है तो।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है, सुनते हैं आपकी पसंद का ही गीत।
0: चल

0: डॉक्टर ज्योति, आज हमने आपसे महिलाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं, साल में, महीने में, छह महीने में, किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें, किस तरह से डॉक्टर की परामर्श से अपना जीवन यापन करें।
1: जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो, हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट, सर्टन टेस्ट, जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को। उसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है। तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए। पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, एक ओपीडी में ही होता है, एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए। तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए, फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर।
0: जी,
1: सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर 1 कैंसर है। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है, तो उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे है, एक टाइप ऑफ एक्सरे जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है लेकिन मैमोग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा एवरी वुमन हर पीरियड्स के बाद या मेनोपॉज के बाद कि कोई गांठ या निपल्स में से कोई डिस्चार्ज आना, कोई ब्लडी डिस्चार्ज आना, या स्किन एक साइड पे खींची हुई है या कुछ भी अलग दिखे अदर देन रूटीन, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके आफ्टर 35-40 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए वन सोनोग्राफी वंस एवरी ईयर ये करना बहुत जरूरी है। दिस इज माई मैसेज टू ऑल वुमेन कि रेगुलर चेकअप, जैसे आप अपना हीमोग्लोबिन कराते हैं, थायराइड चेकअप कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करते हैं, ECG निकालते हैं, अपनी आईज टेस्ट करना है,

0: ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, ये सब के अलावा ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आम तौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रही हैं। डॉक्टर ज्योति शाह, आपने विविध भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

छाया गीत में आज ऐसी नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर जोड़ दिया है ताकि सुनने में हैरत का अनुभव हो और ये एक विलक्षण अनुभव बन जाए। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। दुनिया के दो अलग अलग कोने, दो अलग अलग शख्स, वक्त के स्केल पर जाने कैसे घूमती है धरती कि दोनों आते हैं एक दूसरे के करीब, इतने करीब जैसे बरसों से जानते हों एक दूसरे को, जैसे वो बने हों एक दूसरे के लिए।

दुनिया, जुल्मतों और बेदर्दी वाली ये दुनिया, यहां लगती हैं ठोकरें, यहां टूटता है भरोसा, यहां रोशनी के सागर में मिलता है अंधेरा, और कभी कभी लगता है कि सचमुच इस दुनिया में है कोई कोना जो हमारा अपना हो, जहां हम सुकून से जी सकें।

छह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना। हम अभी हाजिर हुए।

बारिश सिर्फ आसमान की मुंडेर से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमेशा बादल अपना बटुआ खोलें और लुटाते रहें बूंदों की अशर्फियां हमारी धरती पर। कोई कोई बारिश मन के अंदर होती है और सुलग सुलग जाता है मन।

उदास है दिल, उदास दिल का रहा है उदासी भरा नगमा। उदासी भरे नगमे हमारे दिल को सुकून देते हैं, हमारी उदासी को सहलाते हैं, हमारी जिंदगी को अनमोल बनाते हैं और हमें हौसला देते हैं आगे बढ़ने का।

0: आज के छायागीत में थे ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें,
1: न तुम हमें जानो,
2: न तुम हमें जानो।
0: फिल्म बात एक रात की, मजरू सुल्तानपुरी, सचिन देव बर्मन।
1: मेरे दिल कहीं और चल,
2: घूमती दुनिया से दिल भर गया।
0: फिल्म दाग, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन। फिल्म मंजिल, योगेश राहुल देव बर्मन।

फिल्म ठूकर, मजाज लखनवी, सरदार मलिक। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं।
1: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
2: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
1: And Department of Science and Technology, our DST.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
3: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया केम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल

0: विकल्प क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में अगले दो वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्कूलों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति के मसौदे पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सरकार देश के शिक्षा तंत्र में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को एक अहम हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को स्वीकृति दी। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में भी कल तक बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए जन्नत 2 फिल्म का गीत केके की आवाज में। प्रीतम के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है सैयद कादरी ने।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
5: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में मेरे सनम फिल्म का गीत, बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत ओपी नैयर का।

आप आए बहार आई। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

0: स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस फिल्म के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही पलों में 6:35 पर भजनों पर आधारित कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। 7:00 फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज की फिल्म है उमराव जान। 8:00 हवा महल में कामना चंद्रा की लिखी नाटिका सुनवाई जाएगी परिवर्तन। आज आप सुनेंगे इसका दूसरा भाग, निर्देशन अनुराधा शर्मा का। आज के फनकार आज के कार्यक्रम केंद्रित है

संगीतकार उषा खन्ना पर, समय रात 9:30 पर। छाया गीत रात 10 बजे प्रस्तुत करेंगी सलमा सैयद। ढलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

जागो सुबह हो गई। ये कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं सुबह 5 बजे। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। कल सुनिए इसकी 6ठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक और संगीतकार शेखर सेन। समय सुबह 6:45 पर और पुनः प्रसारण शाम 6:45 पर। पुराने फिल्मी गाने सुनेगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे। हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 7:30 पर।

त्रिवेणी आप नियमित सुनते हैं सुबह 8:15 पर और पुनः प्रसारण दोपहर 2 बजे। नए फिल्मी गाने हम आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज के फनकार कल ही कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता विनोद खन्ना पर। समय सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग, यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर। आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर आएंगे दिन में 1 बजे। सदाबहार नगमे आप सुनते हैं दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली बहने सुनेंगी दिन में 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा में सेल्युलॉइड के सितारे के अंतर्गत अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत प्रसारित की जाएगी। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल में वीएम आनंद की लिखी हास्य नाटिका सुनवाई जाएगी वजन घटाओ, निर्देशन कमल दत्त का। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी ममता सिंह। अभी आप आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल में वीएम आनंद की लिखी हास्य नाटिका सुनवाई जाएगी, वजन घटाओ, निर्देशन कमल दत्त का। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी ममता सिंह। अभी आप आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

अभी आपने सुलक्षणा पंडित के स्वर में गीत सुना। फिल्म थी पायल की झनकार। बोल माया गोविंद के थे संगीत राजकमल का। अगली भक्ति रचना आशा भोसले, उषा तिमोथी और कंचन के स्वर में, बोल वर्मा मलिक के संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे केसी डे के बारे में और कार्यक्रम के अंत में शेखर दादा ने एक रचना सुनाई थी और वो भटियाली संगीत, जो समय की पाबंदी के कारण वो रचना पूरी नहीं हो पाई थी। और भटियाली संगीत के बहुत सारे रंग हैं, शेखर दादा बहुत अच्छा गाते हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, वो तो एक साधक है और ऐसे गुणी कलावंत का सानिध्य हमें मिला है, हमारा सौभाग्य है। शेखर दादा, आज हम आपसे इस कड़ी में अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो भटियाली संगीत जहाँ पर छोड़ा था कल की कड़ी में, आज वो सुना दीजिए प्लीज हमारे श्रोताओं को।
2: हाँ बिल्कुल ममता जी, और संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को एक बार पुनः प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ।

0: वाह क्या बात है, बहुत सुंदर गाया। और
1: दरअसल बंगाल का जो लोक संगीत है बड़ा समृद्ध है। उसका कारण ये भी था कि साहित्य, संगीत और दूसरी सभी कलाओं के, अगर आप चित्रकार की बात करेंगे, मूर्तिकार की बात करेंगे,
0: जी
1: तो बंगाल का अपना बड़ा विशेष, उनको ईश्वर ने भी थोड़ा अधिक बरसाया है उन पर। और एक कारण ये भी था कि ईस्ट बंगाल, जो अब बांग्लादेश, पहले ईस्ट पाकिस्तान बना,

0: ये जो मैंने आपको अभी गीत सुनाया है, ये ईस्ट बंगाल बंगाल भाषा,
1: जी
0: जो पूर्व बंगाल में बोली जाती है उसको बंगाल बोलते हैं, और जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है उसको बांग्ला बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: ये
1: क्या बात
0: भाषा जो
1: जी।
0: मराठी और कोंकणी या गुजराती और कच्छी में जो फर्क है वैसा फर्क है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत अद्भुत रंग वहां पे है, वो है बाउल। तो
1: जी।
0: बाउल जो है ये परंपरा भी बंगाल की बड़ी अद्भुत है। और उसके बाद हमारे यहाँ कीर्तन की परंपरा है बंगाल में, जो चैतन्य महाप्रभु के कालखंड से शुरू होती है, और उसमें कृष्ण नाम का गान या भगवान राम का, वैष्णव संप्रदाय, और उसकी पूरी एक परंपरा है कीर्तन
1: जी
0: की।
1: जी
0: इसलिए आपने अगर देखा होगा तो अभी भी वो लोग खोल लेकर के हरि बोल करते हुए उनका कीर्तन होता है।
1: जी
0: और
1: जी
0: उससे प्रेरित होकर के जब बंगाल में शक्ति की पूजा विधिवत आरंभ हुई,
1: जी
0: घर में तो सबके होती ही थी, जैसे हमारे घर की जो कुल देवी हैं वो दुर्गा हैं,
1: जी
0: लेकिन वो घर के अंदर पूजा होती थी। पर जब घर के बाहर वो पूजा होने लगी करीब 300 वर्ष पहले से, उसको हम लोग कहते हैं श्यामा संगीत। श्यामा यानी माँ काली का नाम है। तो
1: जी
0: शक्ति के रूपों के ऊपर हमारे भजन होते हैं, और ये भजन 500 साल पुराने हैं, 500 साल, 550 साल, 300 साल, 450 साल, ऐसी इनकी अवधि हो
1: जी
0: चुकी है, और वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं।
1: जी
0: सब रागों पर आधारित हैं, और एक बहुत बड़ा नाम उनका 1930 के कालखंड में है। मैं केवल उनका नाम उल्लेखित कर रहा हूं ताकि श्रोताओं को मालूम हो और वो खुद अपने शोध से उनको सुन लें। स्वर्गीय पन्ना लाल भट्टाचार्य जी
1: जी
0: के द्वारा जो श्यामा संगीत गाया गया वो बहुत ही अद्भुत है।
1: जी
0: इसके अलावा रविंद्रनाथ ठाकुर जी का योगदान है, जिसको हम रविंद्र संगीत के
1: सही
0: नाम से जानते हैं, और उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है वो निर्गुण भक्ति का भी है, क्योंकि वो स्वयं ब्राह्म समाज से प्रेरित थे। उनके जो पिता थे वो स्वयं ब्राह्म समाज के बहुत बड़े आचार्य माने जाते थे, और उनकी रचनाओं में आपको बहुत सारा ब्राह्म संगीत यानी कि निर्गुण संगीत मिलेगा।
1: जी
0: और उसी कालखंड में, चूंकि हम लोग आकाशवाणी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आकाशवाणी के एक बहुत अद्भुत संगीतकार थे, उनका नाम था काजी नजरुल इस्लाम,
1: जी जी
0: और उनके जो रचनाएं हैं वो रेडियो के लिए कंपोज करते थे, और वो सारी रचनाएं केवल एक बार रेडियो पर प्रसारित होती थी, और आज वो सारी रचनाएं अमर रचनाएं हो चुकी हैं, जो केवल रेडियो में एक गाना हर दिन उनको दिया गया था कि हर दिन आप एक गाना गाइए।
1: जी
0: तो वो नजरुल गीति के नाम से वो रचनाएं हमारे पास हैं।
1: मौजूद है।
0: लेकिन आज की इस कड़ी में जिन महान कलावंत, जिन महान शिल्पी मैं सुनाना चाह रहा हूं, उनको उस कालखंड में कहा गया कि ये आधुनिक मीरा हैं।
1: जी जी
0: 300 से अधिक गाने उन्होंने गाए, फिल्मों में भी और प्राइवेट भी,
1: जी जी
0: और बहुत बड़े बड़े संगीतकारों के साथ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के साथ, काजी नजरुल इस्लाम जी के साथ, कमल दास गुप्ता जैसे महान संगीतकारों के साथ
1: जी
0: उन्होंने काम किया है। और उनका एक, मैं चाहता हूं कि एक बहुत ही सुंदर उनकी एक अमर रचना है। सबसे पहले तो मैं नाम उनका बता रहा हूं, आदरणीय ज्योथिका रॉय जी।
1: जी
0: ज्योथिका रॉय जी पूरा जीवन एक साध्वी की तरह वो रही, वो बिल्कुल बहुत ही आनंद में रहने वाली, आपको उनसे मिलके कभी लगा ही नहीं। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 3-4 बार उनसे मिला हूं, वो हमारे घर पर भी आई, लेकिन इतने सरल मन की, बच्चे जैसी बिल्कुल,
1: जी क्या बात है,
0: और जब गाने बैठे तो सब भूल जाएं।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: उनका एक प्रसिद्ध भजन है, घूंघट का पट खोल तोहे पिया
1: पिया
0: मिलेंगे।
1: मिलेंगे।
0: मैं चाहूंगा हमारे सभी श्रोता ये अमर रचना सुने आदरणीय ज्योथिका रॉय जी के कंठ से।

0: ज्योतिका राय के स्वर में अभी ये रचना हमारे श्रोता सुन रहे थे। तो दादा अभी आप क्या सुनाएंगे?
1: मैं चाहता हूँ कि आज ज्योतिका राय जी का उल्लेख हो रहा है
0: जी,
1: तो उनकी एक रचना का तो मैं केवल नाम ले रहा हूँ, श्रोता खुद ढूंढकर सुन ले। बहुत प्रसिद्ध भजन था उनका, तुलसी मीरा सूर कबीर, एक तुणीर में चारों तीर।
0: क्या बात है,
1: ऐसे बहुत प्रसिद्ध उनका भजन हुआ था। मुझे इसलिए याद है कि मेरी माँ गाया करती थी।
0: क्या बात है।
1: और उनकी एक और रचना है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोता सुने, मिश्र शिवरंजनी और काफी थाट में ये रचना है, तन मन पे मनहर ने रंग दियो डार। बहुत ही सुंदर, इतनी अच्छी रचना ज्योतिका राय जी की है। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता आनंद लें आज की इस कड़ी में
0: जी।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार स्वागत है दिल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज के गाए युगल गीत से। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने। फिल्म का नाम है ओ रोमियो।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए सुनिए तुलसी कुमार, आलम खां, ऐश्वर्या मजूमदार और डब्बू मलिक को फिल्म है एक पहेली लीला। कुमार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है उजैर जायसवाल ने।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए अब सुनिए ट्रैफिक सिग्नल फिल्म का गीत, जिसे गा रहे हैं नुसरत फतेह अली खां। खिलेश शर्मा के लिखे इस गीत की धुन बनाई है संदेश शांड।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद इरफान अरिजीत सिंह सैम भट्ट को फिल्म है मर्डर 2। सैयद कादरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मिथुन ने।

0: प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पाहमला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: The MOU on migration and mobility partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवर TST।
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कॉटेल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से

0: प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
2: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
3: आज MOU में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है, जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
4: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में

0: 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
1: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवंबर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
2: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
3: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
1: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
4: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिन्स के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उषा अय्यर और आशा भोसले के गाए युगल स्वर से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्ण।

लीजिए सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की फिल्म का नाम अदालत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अगला गीत गुमनाम फिल्म से है जिसे गाया है मोहम्मद रफी और शारदा ने। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अनुभव फिल्म से, जिसे गाया है गीता दत्त ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत कनु रॉय का।

गीता दत्त के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: है भोली सी कातिल हर कदा, दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा। कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा। मेरा यार मेरा प्यार, मेरा यार मेरा प्यार, वो दो आँखों में खुमार लेके आया है। हसीन वादियों
1: अपने दौर की संगीतकार रही जद्दनबाई और सरस्वती देवी के बाद एक अंतराल के पश्चात उषा खन्ना का परिचय सुनने वालों से हुआ बतौर संगीतकार। वो फिल्म थी 1959 में बनी दिल देके देखो।

उषा खन्ना अरेबिक संगीत से हमेशा प्रभावित रही हैं, लेकिन कोई भी गीत उन्होंने अरेबिक म्यूजिक में पूरी तरह नहीं ढाला, बल्कि उस विधा का हल्का सा पुट अपनी शैली में बांधकर उषा खन्ना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट मौलिक संगीत रचनाएं बनाई

उषा खन्ना को फिल्मी या संगीतमय परिवेश तो पूरी तरह हासिल नहीं था, लेकिन उनके पिता मनोहर खन्ना, जो ग्वालियर में मुलाजिम थे और 1946 में किसी काम से तत्कालीन बंबई आए, जो आज का मुंबई है, तो उनकी मुलाकात जानी मानी अभिनेत्री नरगिस की माँ जद्दनबाई से हुई, जो खुद एक संगीतकार थीं। जद्दनबाई के कहने पर मनोहर खन्ना ने जावेद अनवर के नाम से कई गजलें लिखीं और वो गीतकार भी बने। इसी दौरान उषा खन्ना को भी संगीत ने प्रेरित

जाने माने संगीतकार ओपी नैयर ने उषा खन्ना की मुलाकात करवाई फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी से। उनके लिए उषा जी ने एक गीत भी गाया। मुखर्जी साहब ने इसी दौरान उषा जी की योग्यता को पहचान लिया और उन्होंने उषा खन्ना को संगीतकार बनने की सलाह दी। यही नहीं, शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को अपनी फिल्म दिल देके देखो के लिए साइन भी किया। फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद मुखर्जी साहब ने उषा खन्ना से अपनी अगली फिल्म हम हिंदुस्तानी का संगीत भी तैयार करवाया।

जब चले सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उषा खन्ना ने मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ मिलकर अपनी टीम भावना से काम आगे बढ़ाया और इस तिकड़ी ने तमाम हिट गानों का निर्माण किया।

फिल्मकार और गीतकार सावन कुमार टाक का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपनी तमाम फिल्मों का संगीत उषा खन्ना से ही तैयार करवाया है। लगातार संपर्क में आने के बाद दोनों ने विवाह भी किया, जो ज्यादा समय टिक नहीं पाया, लेकिन गीतकार और संगीतकार के बतौर दोनों का व्यावसायिक संबंध हमेशा कायम रहा।

दोस्तों, तत्कालीन उभरते गायकों जैसे अनुपमा देशपांडे, पंकज उधास, हेमलता, मोहम्मद अजीज, रूप कुमार राठौड़, शब्बीर कुमार और सोनू निगम को भी उषा खन्ना ने अपने संगीत में गाने का मौका दिया था। दक्षिण के जाने माने गायक के.जे. येसुदास ने भी उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में बेहतरीन गाने गाए हैं। फिल्म दादा में येसुदास की गई रचना को फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ।

उषा खन्ना ने हिंदी में 150 से ज्यादा फिल्मों के अलावा मलयालम फिल्मों में भी संगीत दिया है। 60 से लेकर 80 तक के दशकों में उन्होंने अपने कर्णप्रिय संगीत से सभी का दिल बहला दिया। मधुबन

0: क्या जिए।
1: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना पर। संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक रात एक बात लिखूंगी, तेरा नाम साफ साफ लिखूंगी। रोशन चांद ठंडी हवा लिखूंगी, तुझको अपने साथ लिखूंगी। तेरे हाथ में अपना हाथ लिखूंगी। हकीकत में तो तू मिला नहीं हमको, तो अपनी किताबे मोहब्बत में एक मुलाकात लिखूंगी। तू मेरा ना हो सका क्यों, ये सवाल लिखूंगी। तेरे दिल में ना हम समा पाए तो कोई बात नहीं, और हम बस तेरे हैं ये बात लिखूंगी। हर कोई पढ़ सके इतना साफ साफ लिखूंगी। एक रात मैं ये बात लिख दूँ।

जानते हैं वो, फिर भी अनजान बनते हैं। पूछते हैं हमसे कि आपकी पसंद क्या है, खुद जवाब होकर हमसे सवाल करते हैं। सुनो तुम खुशबू की तरह।

0: मेरी हर सांस में अपना प्यार बसाने का वादा करो। रंग जितने तुम्हारी मोहब्बत के हैं मेरे दिल में सजाने का वादा करो। सिर्फ लफ्जों से इकरार होता नहीं, यक तरफा प्यार होता नहीं। मैं तुम्हें याद रखने की कसम उठाऊं, तुम मुझे ना भुलाने का वादा करो।
1: इस रंग

की हर धड़कन आपका नाम सुनाती है। आपसे इश्क है बेहद और बेहिसाब, ये बात मेरी खामोशी सुनाती है। एक तुम ही को खुदा से मांगा है, जब भी मांगी कोई दुआ पास आओ, ये इल्तिजा सुन लो। प्यार है तुमसे बेपना सुन लो, इब्तिदा इश्क की हुई तुमसे, तुम हो चाहत की इंतहा सुन लो। इश्क भी तुमसे प्यार भी तुमसे, मेरे इंतजार की राहत मेरे दिल की चाहत हो तुम, आंखों से छलकता जाम हो तुम, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम, सिर्फ तुम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये मोहब्बतें, ये इनायतें, ये मसर्रतें तेरे नाम, मेरे हम कदम, मेरे हम नशी, ये रफाकतें तेरे नाम। कभी गुमशुदा, कभी

रूबरू कभी आईना कभी अक्स तू, मेरे हमनवा मेरी ख्वाहिशें मेरी मोहब्बतें तेरे नाम, कभी ये हंसी कभी ये नमी कभी रंजिशें कभी कुर्बतें, मेरी जिंदगी की ये सभी हसीन इबारतें तेरे नाम।

तब भी मोहब्बत थी, मुझे अब भी मोहब्बत है तेरी हर एक आदत से, तेरी बेजा शिकायत से, तेरी राहों में रुकने से, तेरे कदमों की आहट से, तेरी मुस्कुराहट से, तेरी आँखों के जादू से, तेरी बातों की खुशबू से, तेरी दिलकश अदाओं से, तेरे कातिल जफाओं से, मुझे तब भी मोहब्बत थी।

चांद की किरणों, तुम उसको छूकर आओ ना। वो कब क्या करता है, वो जागता है या सोता है, वो शाम को कैसा लगता है, वो रात को कैसा दिखता है, जब सोए तो कैसा लगता है, जब जागे तो कैसा दिखता है। तुम चुपके चुपके जाओ ना, तुम उसको छूकर आओ ना। हम उसके बिना अधूरे हैं और जीना मुश्किल है। कानों में उसके कह दो ना कि कोई याद बहुत उसे करता है। ऐ चांद की किरणों, जाओ ना जरा उसको छूकर।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत।

0: इंस्टाग्राम पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी।

0: इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से भेंट की। डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहामलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रूडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defence cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
0: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग